कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और वो पनाह देता है और उसके मुकाबले कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। फौरन कह देंगे कि ऐसी बादशाही तो अल्लाह ही की है। कहो कि फिर तुम पर जादू कहां से पड़ जाता है? बात यह है कि हमने इनके पास हक पहुंचा दिया है और ये जो बुतपरस्ती किए जाते हैं बेशक झूठे हैं। अल्लाह ने न तो किसी को अपना बेटा बनाया है और न उसके साथ कोई और माबूद है। ऐसा होता तो हर माबूद अपनी अपनी मखलूकात को लेकर चल देता और एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। ये लोग जो कुछ अल्लाह के बारे में बयान करते हैं अल्लाह उससे पाक है। वो पोशीदा और जाहिर को जानता है और मुशरिक जो उसके साथ शरीक ठहराते हैं उसकी शान उससे बुलंद है।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301 54 5414 456 तौकीर अहमद 0306

0: जी जान तारो मसालो हर वे जे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385699।

0: ऐसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा, तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहन, उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS, तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों सा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा, तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे

0: जी खारिश फट फुरड़ियों बारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीए मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जीए मीरापुर FM 94, नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां ऐं तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं। हिन वक़्तु वरी असां हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक ऐं कमर्शल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं, कॾहिं बि न वञिजो।

पंजाब जी वजीर आला मरियम नवाज जी पीपुल्स पार्टी जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सां लंडन में मुलाकात आईनी तरमीमन समेत अहम सियासी मामलन ते गाल बोल ज़रियन मौजूद बिन्ही अगवाणनि नवनि सूबनि जे क़याम जी मुख़ालफ़त ते हिक ॿिए सां गॾियल सहकार जी ख़ातिरी कराई। मुलाक़ात दौरान हिकु भेरो ॿीहर नून लीग ऐं पीपुल्स पार्टी जे इतिहाद खे मज़बूत रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो।

0: इस्लामाबाद के नौ इंतजामी यूनिट ठाहिण जी तैयारी आला सतही कमेटियुनि खां ड्राफ्ट वज़ीर आज़म खे पेश करे छॾियो। हुकूमती ज़रियनि मूजिबि इस्लामाबाद जे 27 रुकनी पंहिंजी असेंबली हूंदी। 21 सीटनि जी चूंड आवाम जे वोटनि सां थींदी। औरतुनि लाइ 5 ऐं अकलियतनि लाइ 1 सीट मखसूस करण जी बि सिफ़ारिश कई वई। असेंबली मेयर या वरी वज़ीर जी चूंड कंदे तजवीज़ मुताबिक़ असेंबली में चीफ एग्जीक्यूटिव ऐं 27 इंतज़ामी खाता हूंदा। इस्लामाबाद जे नए मॉडल जी मंज़ूरी आइनी तरमीम असेंबलीअ मां सादी अक्सरियत सां वरिती वेंदी। सिहत, तालीम, माहौलियात ऐं शहरी सहूलियतूं मकामी हुकूमत जी ज़िमेवारी हूंदी। कानून, अमुन ऐं मास्टर प्लान जा शोबा वफ़ाक पंहिंजे ई हथ में रखंदो। मुख़्तलिफ़ इदारनि जा इख़्तियार बि नए सिरे तय कया वेंदा। अमुन, अमान ऐं मास्टर प्लानिंग वफ़ाक पंहिंजे गवर्नर या वज़ारत वसीले कंट्रोल कंदो। इंतिज़ामी मामला संभालण लाइ चीफ सेक्रेटरी ऐं 4 सेक्रेटरी मुक़ररु करण जी सिफ़ारिश कई वई। ज़रियनि मूजिबि इस्लामाबाद जे नए ढांचे जी मंज़ूरी वफ़ाकी काबीना ॾींदी, जंहिं बाद हुन जी मंज़ूरी क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट खां वरिती वेंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे। दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार, मेहरापुर, 03000-310-509, 03000-310-5109।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज़ ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज़ ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज़, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

हिन समूरी काइनात में या खणी ईअं चइजे त हिन आसमान हेठि जेका बि साह वारी मखलूक आहे सा आहे ई मुहबत जे मियाण में बंदि। असां इंसाननि ऐं जानवरनि जो अज़ल खां वास्तो रहियो ई कुर्ब करण वारनि सां आहे। जिते बि इंसान खे मुहबत मिलंदी आहे या कुर्ब ॾिसण में आहे, जंहिंजी शाम ॾाढी थदड़ी ऐं वणंदड़ थिए थी। हिन समाज में मुहबतूं विरिहाईंदड़ ऐं कुर्ब वंडींदड़ इंसान बि थधा शामरा ॾींदड़ वण हूंदा आहिनि, जिन जी शाम में वेही करे माण्हू कुझु हासिलु करे सघिजे थो। त साईं जा प्यार मुहबत करण सां ई जेको आहे सो उहे शादीअ जे बंधणनि में ॿधजी वेंदा आहिनि, छो त जेके शादीअ जा जोड़ा आहिनि उहे आसमान ते ठहंदा आहिनि। ऐं ईअं प्यार मुहबत त ज़रूरु हूंदो आहे, पर जेके शादीअ जा जोड़ा हूंदा आहिनि आसमान ते ठहंदा आहिनि ऐं उहे ई कामयाबु हूंदा आहिनि।

0: It's 10th.
1: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot, a name to be trusted.
2: Sariya, Garder, Tier, Engel, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Kresh, Ai Rang Vagera, Bazar Kham Bariya, Dastyab Ain.
1: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
2: Rabtilai, Proprietor Gulam Nabi Mughal, 0300-320-04372, Ai 0242-460100.
3: उम्मीद के दिए जलते हैं,
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।

0: ऐं अदी अॼु त ॾाढी ख़ुशि पई नज़र अची।
1: छो न ख़ुशि थियां अदी, जॾहिं खां मुंहिंजे मुड़ुस ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो खारायो आहे त खीर जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचनि। ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं।
0: त मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, एमए, डीएचएमएस सिंध, आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर।

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
0: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

बाद में तव्हांखे वरी उन जो सही जवाब बि ॿुधाईंदासीं ऐं अव्हां जा नाला बि खणंदासीं जिन दोस्तनि सही जवाब ॾिनो आहे। ऐं साईं जा बसर जे हवाले सां कुझु मालूमात आहे अव्हां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदासीं त जेको ॻाढ़ो बसर आहे उहो हूअं बि अलाह साईं जे काई बि जेका शइ ख़लकियल आहे जेका बि शइ अलाह साईं पैदा कई आहे उहा कंहिं बि हिकमत खां ख़ाली न आहे। पर लिखनि था ॾह त ॻाढ़ो बसर कैंसर खां काफ़ी बचाव करे थो। जंहिं बसर में ऐं ॿियनि भाॼियुनि में मौजूदु हिकु हिकु पिगमेंट एंथो साइन जेको भाॼियुनि खे रंग ॾींदो आहे कोष्टनि जे असर खे वधाईंदो बि आहे। यानि बसर जो रंग जेतिरो वधीक ॻाढ़ो हूंदो ओतिरो हुन में एंथो साइन वधीक मिक़दार में हूंदो ऐं उहो बसर कैंसर ख़िलाफ़ु ओतिरी वधीक वेड़ कंदो। तहक़ीक़ मूजिबि ॻाढ़ो बसर कैंसर जे ख़लियुनि जे विच में हिक ॿिए सां राब्ते खे काटींदो आहे जॾहिं त अहिड़ो ई माहौली माहौल बि ठाहींदो आहे जंहिंमें उहे वधीक वाद वीज नाहिनि करे सघंदा। यानि जेके उहे जरासीम हूंदा आहिनि कैंसर जा ॻाढ़ो बसर न रुगो छातीअ जे पर वॾे आंड्रे जी कैंसर सूंदो बि ॿियनि क़िस्म जे कैंसर ख़िलाफ़ बि असराइतो साबित थी सघे थो। माहिरनि जो चवणु आहे त ॻाढ़े बसर खां सवाइ ॿिए रंग जे बसर में बि एंटी ऑक्सीडिन जेको वॾो मिक़दार में कॉन्स्टन मौजूदु आहे जेको कैंसर सूदो ॿियनि घणनि बीमारियुनि खां तहफ़ुज़ फराहम करे सघे थो। त साईं मुंहिंजा काई बि शइ ख़लकियल अलाह जी कंहिं बि हिकमत खां ख़ाली न आहे। हूअं बि चवंदा आहिनि त अंगूर खाइण सां बि इंसान जी कैंसर ख़तमु थिए थी पर अॼु जेका असां मालूमात पढ़ीसीं त वाक़ई ॻाढ़ो बसर खाइण सां बि इंसान जे कैंसर में पंहिंजो घटिताई थिए पई।

जी हा समय मुमताज़ लाशारी जे इन ख़ूबसूरत नगमे ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुची पियो पंहिंजी पुॼाणी ते। हयाती बख़ैर इनशाला अवां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी, तेसि ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।

कयो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं सदर आसिफ़ अली ज़रदारी जो। फिज़ाया जे ॾिहाड़े ते पैगाम, सदर आसिफ़ अली ज़रदारी चयो त हक़ वारी जंग में साबित थियो त दुश्मन केॾो बि ताक़तवर हुजे असांजे अज़म खे शिकस्त नथो ॾेई सघे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाक फिज़ाया जे शाहिननि पंहिंजे पेशावरानी सलाहियत महारत पाण मंझराई आहे। सेप्टेम्बर ऐं मई वारी जंग में दुश्मन खे शिकस्त ॾिनी। थरपारकर जे सूफ़ी बुज़ुर्ग हरदास भगत जो गादी नशीन भगत माथूराम ध्यान करे वियो। सोग में शहर जे समूरनि बाज़ारनि समेत कारोबार मर्कज़ बंदि रहियो। माथूराम जूं आख़िरी रस्मूं अॼु ई अदा कयूं वेंदियूं। हिंगोर जा भरिसां क़ौमी शाहराह ते ऑयल टैंकर जो कार खे टकर, ॿ ॼणा फौत। हादसे में जावेद अली शाह समेत ॿ ॼणा

0: ऐं भिरिया रोड में कराची खां लाहौर वींदड़ तेज़गाम एक्सप्रेस जे टकर में नौजवान फोती नौजवान जी सुञाणप भिरिया रोड वासी अब्बास पुट कदीर मलिक थी, लाश अस्पताल मुंतकिल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कीमहा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।
4: असली चीजान चारों मसालों जी सुन्याण पर ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा। जीजान चारों मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त, जीजान चारों मसालो ढोरे सेहतमंद, जीजान चारों मसालो।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 03000338569।
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई।
6: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
7: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
8: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
8: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
8: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
9: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
10: 03013992836। मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा 3 की ताकत

0: लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल टू पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

पाकिस्तान कश्मीर बाबत भारतीय बयान के रद्द करे छो। आलमी बिरादरी का नोटिस जो मुतालबो। परडेही ऑफिस मूजिब एक तरफ का तकरारी कदम। जम्मू कश्मीर की हैसियत तब्दील नथा करे सकन। ई मामलो गडियल कौमन की सलामती काउंसिल के एजेंडा जो हिस्सो है। भारत कश्मीरी अवाम के हक डेण जा वायदा पूरा करे। नवा सूबा ठाण खिलाफ नून लीग ए पीपल्स पार्टी का आवाज बणजी वया। पंजाब के वजीर आला मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से लंडन में मुलाकात। आइनी तरमीमन समेत अहम सियासी मामलों से गाल बोल। जरियन मौजूद बिन्हीं अगवाणन नवन सूबन के कयाम की मुखालफत से एक बे से गडियल सहकार की खातरी कराई। मुलाकात दौरान एक भेरो बीहर नून लीग ए पीपल्स पार्टी के इतिहाद के मजबूत रखने इतफाक किया।

सेप्टेम्बर ऐं मई वारनि जंगनि में पाक फिज़ाया जे शाहिनन आला किरदार अदा कयो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं सदर आसिफ़ अली ज़रदारी जो फिज़ाया जे ॾियारी ते पैगाम। सदर आसिफ़ अली ज़रदारी चयो आहे त हक़ वारे जंग में साबित थियो त दुश्मन केॾो बि ताक़तवर हुजे, असांजे अज़म खे शिकस्त नथो ॾेई सघे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाक फिज़ाया जे शाहिनन पंहिंजे पेशावरानी सलाहियत महारत पाण मञराई आहे। सेप्टेम्बर ऐं मई वारी जंग में दुश्मन खे शिकस्त ॾिनी।

0: जो थी वयो अमारती तेल जे अघ में घटाई $103 जी थी वयो। मीर रज़ा केस बाबत अदालती कमीशन आडो मीर रज़ा जा वारिस ऐं दोस्त पेश। कमीशन मीर रज़ा जे दोस्त खां सवाल कयो तव्हां खे कीअं ख़बर पई त मीर रज़ा गुम थी वियो। जवाब ॾिनो त मीर रज़ा जी मङेदी ॿुधायो आहे त आख़िरी भेरो मीर रज़ा सां मुलाक़ात 28 जुलाई ते थी। उमेर बाब चांडे जो चवण आहे त मरसू सिंध ॾिसूं जा नारा हणंदड़ी सिंध जे वसीलनि ऐं वहदत जी सौदेबाज़ीअ में मुलविस आहिनि। अहिड़नि माण्हुनि जा नारा तकरीरूं ऐं सिंध दोस्तीअ जूं दावाऊं अवाम खां सियासी हिमायत हासिल करण खां सवाइ ॿी का बि हैसियत नथियूं रखनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।

0: जी जान तारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03003105109, 03003105109।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: सोनी अज त डाढी खुश थी लगे।
3: हां साईं गाल भी एड़ी या है।
2: भला मुखे भी बुदाए केड़ी गाल आ है।
3: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आ है।
2: छा छा
3: ओहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे तो ढोर सेहतमंद थेन ता गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे तो।
2: वाह सोनी वाह वाह जी गाल बुधाई, पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
3: साईं रेडीए थे ता बुधाइन बुद्ध अजी वठी अज।
2: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
3: हा साईं हा।
4: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
6: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
7: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई।
7: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
8: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
9: अस्सलाम वालेकुम अदा।
10: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
9: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
10: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
9: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
9: मुझे दुकान जी बेड रंदी?
10: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिल मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
9: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
10: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
11: 03013992836
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इस्लामाबाद के नौ इंतजामी यूनिट ठहण की तैयारी। आला सतह कमेटी इम्कानी ड्राफ्ट वजीर आजम के पेश कर छो। हुकूमती जरिए मूजिब इस्लामाबाद के सतावी रुकनी पेंजी असेंबली हूंदी। इकवीह सीटन की चूंड आवाम के वोटन से थन्दी। औरतन लाए पंज अकलियतन लाए एक सीट मखसूस करण की भी सिफारिश कई वही। असेंबली मेयर या वडे वजीर की चूंड कंदी। तजवीज मुताबिक असेंबली में चीफ एग्जेक्टिव ए सतावी इंतजामी खाता हूंदा। इस्लामाबाद के नए मॉडल की मंजूरी आइनी तरमीम असेंबली में सादी अक्सरियत से वरती वेंदी। सेहत तालीम माहौलियात ए शहरी सहूलतू मकामी हुकूमत की जिम्मेवारी हूंदियूं। कानून अमन ए मास्टर प्लान जहा शोबा वफाक पैंजे ही हथ में रखंदो। सीडीटीए समेत मुख्तलिफ इदारन जा इख्तियार भी नए सर तय कया वेंदा। अमन अमान ए मास्टर प्लानिंग वफाक पैंजे घरू वजारत वसीले कंट्रोल कंदो। इंतजामी मामला संभालण चीफ सेक्रेटरी ए चार सेक्रेटरी मुकरर करण की सिफारिश कई वही। जरियन मूजिब इस्लामाबाद के नए ढांचे की मंजूरी वफाकी काबिना डींदी जै बाद उन मंजूरी कौमी असेंबली ए सेनेट का वरती वेंदी। इस्लामाबाद के इंतजामी मॉडल बनाने की तैयारी मुकम्मल थी चुकी है। कमेटी में लंदन वाशिंगटन ए दिल्ली के मॉडल से बहस किया वो। वफाक वजीर तारिक फजल चौधरी है ड्राफ्ट सभी पार्टी से शेयर किया वो। इतफाक राय का बो मरलो शुरू थन्द तो इंतजामी यूनिट कि रेफरेंडम जो बो नालो आवाम की राय है। पीटीआई पारा सूबन के विरांगे की मुखालफत। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा है टेहत्तर आइन खिलाफ वही सूबन के विरांगे की हिमायत न कदासी। आइन वाजे है तो सूबे के विरांगे लाए इन सूबे की असेंबली ही मंजूरी डींदी। नवा सूबा ठाण खिलाफ नून लीग ए पीपल्स पार्टी एक आवाज बनजी वया। पंजाब के वजीर आला मरियम नवाज के पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से लंदन में मुलाकात। आइनी तरमीम समेत अहम सियासी मामलों से गाल बोल। जरियन मूजिब बिन्हीं अगवाणन नवन सूबन के कयाम की मुखालफत एक बे से गड़ियल सहकार की खातरी कराई। मुलाकात दौरान एक भेरों बीहर नून लीग ए पीपल्स पार्टी के इतिहाद के मजबूत रखने से इतफाक किया वो। पाकिस्तान कश्मीर बाबत भारतीय बयान के रद्द कर छो। आलमी वर्दे खान नोटिस जो मुतालबो। परदेही ऑफिस मूजिब एक तरफ खान तकरारी कदम जम्मू कश्मीर की हैसियत तब्दील नथा करे सघन। ही मामलो गडियल कौमन की सलामती काउंसिल के एजेंडा जो हिस्सो आ। भारत कश्मीरी अवाम के हक डण जा वायदा पूरा करे। सेप्टेम्बर ए मई वाले जंगिन में पाक फिजाया के शाहीन आला किरदार अदा कयो। वजीर आजम शहबाज शरीफ ए सदर आसिफ अली जरदारी जो फिजाया के दिहाड़े ते पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी है तो हक वारी जंग में साबित थो तो दुश्मन केडो भी ताकतवर हुए असाज अजम के शिकस्त न तो डेई सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ तो पाक फिजाया के शाहीन पैंजे पेशावरानी सलाहत महारत पान मंझराई है। सेप्टेम्बर ए मई वाली जंग में दुश्मन के शिकस्त डिनी। आलमी मार्केट में तेल के अघन में वाद। ब्रेंट क्रूड फी बैरल $96 ए अमेरिकी तेल फी बैरल $91 जो थी वो। अमारती तेल के अघ में घटताई $103 की थी वही। मीर रजा केस बाबत अदालती कमीशन आयो। मीर रजा जा वारिस ए दोस्त पेश। कमीशन मीर रजा के दोस्त हसीम का सवाल किया खबर पई त मीर रजा गुम थी वो है। असीम जवाब दिनों मीर रजा की मंगेंदी बुधा है आखिरी भेरों मीर रजा से मुलाकात 28 जुलाई थी।

0: थर पारकर जो सूफी बुजुर्ग हरदास भगत जो गादी नशीन भगत मातूराम देहांत करे वयो सोग में मिठी जे समूरन बाजारन समेत कारोबारी मर्कज बंद मातूराम जो आखिरी रस्मों अदा कयूं पयूं वञन। हिंगोर जा भरसा कौमी शाहरा ते ऑयल टैंकर जो कार ॼणा फोत हादसे में जावेद अली शाह समेत ॿ ॼणा फोत लाश अस्पताल ऐं भिरिया रोड में कराची खां लाहौर वेंदड़ तेज़गाम एक्सप्रेस जे टकर में नौजवान फोत।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 0300-310-509-0300-510-5109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब होयो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सिंजब नदल तमाम खूबसूरत मासूमई सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलामु अलैकुम। पुरकुलों दुआ की समंदर जादू की बारिश सलासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नींद से जागता जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांद से दर्द गम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। जी हाँ जनाब प्रोग्राम खैर कोई नया सा प्रोग्राम नहीं है भाई, आप लोग जानते हैं जबकि आप लोगों को पता है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो जनाब आप लोगों को मजीद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इस प्रोग्राम में मालूम पड़ने वाली है, चाहे अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते हैं या फिर नहीं रखते, क्योंकि नहीं रखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि आप लोगों की खूबसूरती में इजाफा करने की बहुत ज्यादा काम आएंगे। वैसे भी कहते हैं कि खूबसूरती का ख्याल रखना बहुत ही एक अच्छी सी बात होती है, तो खूबसूरती का ख्याल रखना किस तरह से होता है, किस तरह खूबसूरती की जो ना वो केयर की जाती है और खूबसूरती को हमेशा के लिए किस तरह जो है ना वो महफूज किया जा सकता है, इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ ढेरों ढेर बातें होने वाली हैं। तो रेडी शेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए हमारे साथ एंजॉय करने के लिए और हमारे साथ बहुत ज्यादा वाली बातें करने के साथ। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद है खूबसूरती की दुनिया में आपको कहा जाता है वेलकम इन खुशामदीद। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और जरा बताइए कैसे हैं, क्या कर रहे थे? बिल्कुल जी उम्मीदन शदीदन के ठीक ठाक होंगे और सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ होगा जी प्रोग्राम में ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि पूरे 2 घंटे हम यहाँ पर आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं। और आप यकीन माने कि इन 2 घंटों में आप लोगों के साथ हम कितनी ज्यादा वाली बातें करने वाले हैं ये तो भाई आप लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि जब आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं तो प्रोग्राम में आप लोगों के लिए फन होगा, एंटरटेनमेंट होगी, सॉन्ग्स होंगे और आप लोगों से पूछे जाएंगे सवाल, आप लोगों के लिए सेगमेंट्स होंगे प्रोग्राम में और आप लोगों के लिए बहुत सारी खूबसूरती की बातें भी होने वाली है। ओके जी, तो कुल मिलाकर रेडी शेडी हो जाइए हमारा साथ देने के लिए और फुल ऑन एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजी और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सो भी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 और किसमाने काम करती भैया सिद्रा, तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 और की समाय लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम करते हैं जी हम एक बहुत ही खूबसूरत

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी नाच चुके हम सबने सुनी और इसके साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोग्राम है जनाब, हम मौजूद रहेंगे पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है। प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाली खूबसूरती के हिसाब से बातें की जाएंगी, लेकिन देखा जाए तो जो लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं, जो लोग प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो उनको तरीकेकार बताने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को आज के प्रोग्राम का टॉपिक बता दिया जाए तो ये उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो मेरा आज से आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे बताने वाले हैं कि वैसे तो इस प्रोग्राम में खूबसूरती की बातें होंगी, तो आज मेरा ऐसे दिल कर रहा था कि आप लोगों से पूछे कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत अलग अलग तरीकेकार होते हैं, अलग अलग सी ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि वो ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन क्या पता उनको खूबसूरती मिले या ना मिले। लेकिन आप जरा मुझे ये बताएं कि आपको आपने अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं, क्योंकि खूबसूरती का ख्याल रखना बहुत ज्यादा एक मुश्किल सा काम लगता है कुछ लोगों को। लेकिन मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताती रहूंगी कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रख सकते हैं। ओके जी, प्रोग्राम में आप लोगों के साथ जिस प्रोडक्ट के बारे में बात होगी तो वो जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर आज के प्रोग्राम में बात होने वाली है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप अच्छे से जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है,

हाँ, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, डी स्किन फेस वॉश हो, इनके बारे में बातें होंगी. लेकिन साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या तरीके कार होने वाले, तो अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस देंगे, अपने नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8821 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो LRK FM 88.8 हमारा पेज है. अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है. जल्दी से पेज पर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. ओके जी, जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए. शेयरिंग इज केयरिंग होती है, जल्दी से पोस्ट को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को बता पाए जनाब कि आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम कितनी ज्यादा जरूरी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के कितने ज्यादा वाले फायदे हैं जो कि आपको मिलेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, डी स्किन फेस वॉश हो, इनके बारे में बातें ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है. अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये चीज तो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन जो नए नए लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्या प्रोडक्ट है, कैसे लगाना है, क्यों इसके फायदे हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आप लोगों को बताते चले. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है, यानी कि जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे केमिकल एड किए जाते हैं, या फिर आपको बताया जाता है कि फलां प्रोडक्ट लगाएंगे तो आप जल्दी में गोरे हो जाएंगे, ये वाला प्रोडक्ट लगाएं ये जल्दी में गोरा कर देता है. तो जो जल्दी में गोरा करने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर हेवी से केमिकल डाले जाते हैं. लेकिन यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जब बात आती है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे बेहतरीन बात यह है जनाब कि ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर प्रोडक्ट तैयार किया गया है, फुल जनाब मेडिकेटेड फार्मूला है. और जो है ना इसकी जो मेकिंग है, इसका जो प्रोसेस है, वो इतना जबरदस्त रखा गया है कि आप जितने भी लोग हैं, जितने सारे हमें लोग सुन रहे हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन टाइप है, ऑयली स्किन है, ड्राई है, हर तरह की स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के तरीकेकार क्या होने वाले हैं, या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं. और साथ ही साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं या फिर आप डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते ना कहते हैं हम क्रीम नहीं लगा पाते, चले कोई बात नहीं, आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं. और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसके बारे में तो क्या ही बात बताऊं, यानी कि डी स्किन का जो फेस वॉश तैयार किया गया है तो वो इतना प्रीमियम क्वालिटी का, इसका जो है ना वो थीम रखा गया है या इसकी जो क्वालिटी रखी गई है वो इतनी प्रीमियम क्वालिटी की है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप नाम लेकर तलब करने वाले हैं. अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स में चले जाते हैं, वहां से आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं आपको मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको नंबर्स भी बताए जाएंगे और नंबर्स जो बताए जाएंगे उनके ऊपर आपको राब्ता करना पड़ेगा और राब्ता करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाएंगे. तो नंबर से जनाब नोट कीजिएगा. बिल्कुल जी, पहला नंबर है 03-12-50-25-907 और दूसरा नंबर है 03-27-38-43-909. अच्छा, ये नंबर से जो कि आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा सकते हैं. तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं मिल रहे, और जल्दी से हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताएं आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं. ओके, तो बिल्कुल आपके कॉमेंट्स हैं जिनकी जानब हम आएंगे, आपके साथ गुफ्तगु होगी, बातें होंगी, चिट चैट होंगी, मजे करेंगे. अच्छा, तो कॉमेंट्स वाले जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है ना. ऐसे ये होता है कि भाई बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आ चुका है और कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अब चल रहा है. ओके जी, सो प्रोग्राम में हमें यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं बरकत रमादानी जमाली बलोच, हमें सुन रहे हैं जी बलोचिस्तान से, आपको वेलकम कहा जाता है. रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपका प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया. और इसके अलावा अखलाक बलोच हमारे साथ हैं, अखलाक भाई कहते हैं नाइस शो, आपका इंतजार कर रहे थे, जाय बुधा. और सलीम गोपांग हमारे साथ कहते हैं नूर हुसैन जमाली, गंदा खान बलोच से बेहतरीन प्रोडक्ट है, हम इस्तेमाल करते हैं, क्या बात है जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूजर्स
हाफिज आ चुके हैं महफिल में और आपको वेलकम कहा जाता है. और हाफिज मोहम्मद बाबर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम. और राजा रमीज हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम. मैं ठीक हूँ. कहते आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्रा मुस्कान है. और उसके अलावा फरवा गुल हमारे साथ हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर. अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और आपके अच्छे नसीब करे, आमीन जी सुमा आमीन. और नजीर कोसम में सुन रहे हैं, बलोचिस्तान से भाईजान को वेलकम कहा जाता है. और भाईजान लिखते हैं कि अल्लाह से प्यार करने वाले अल्लाह के काम से प्यार करते हैं, और खालिक की इज्जत करने वाले, खालिक का अदब करने वाले, खालिक के अमल का एहतराम करते हैं, और खालिक का अमल मखलूक को पैदा फरमाना है. अच्छा जी, ओके ओके, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच. और साथ साथ हम ये बहुत ही प्यारे सा गाना भी सुनेंगे. आप बोलेंगे कि भाई सिर्फ सदरा बातें करती जा रही हैं, तो गाने भी सुनेंगे और आपको बताएंगे. प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, वैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताएं कौन सा प्रोडक्ट लगाया, कब लगाना स्टार्ट कर चुके हैं और रिजल्ट कैसे पा चुके हैं.

मोहम्मद राशिद अवान हमें सुन रही थे। सलाम सिस्टर सिद्रा, काफी दिनों के बाद आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सबको सलाम जी, वाले को बस सलाम कहते हैं। जीशान अली बोजारा में सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम। फरवा कुल के सिस्टर आप कैसी हैं? जो आपका नाइस है, गुड वॉइस, ओके थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ वफा मुमताज अली खोसो भाई, गोट रईस गुल हसन खोसो से वफा मुमताज अली खोसो, कलंदर बख्श खोसो, वालेकुम असलाम कहते हैं। शो तमाम जबरदस्त आए, थैंक यू तमाम भाई जो मोहब्बत हुआ है। अखलाक भाई कहते हैं कि आंसर डी, स्किन ब्यूटी क्रीम लगा के हम अपने हुसन की केयर करते हैं। क्या बात है। वैसे मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं, यानी कि खूबसूरत होना, खूबसूरत रहना हर किसी को पसंद आता है। कोई एक ऐसा इंसान ही होगा जिसको खूबसूरत दिखना अच्छा नहीं लगता होगा। हर किसी को खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है। खूबसूरती का ख्याल रखना ये बहुत ही एक अच्छी सी आदत होती है। तो आप मुझे बताएं कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं, और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ही बात है। और उसके अलावा कासिम खान हमें सुन रहे हैं, सरदार कासिम खान मीरानी, ओके शाह जमाल से हमारे साथ है मेरे ख्याल में, आपको वेलकम कहते हैं भाई जान। और चाचा खालिद आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं चाचा, तबीयत कैसी है आपकी।

पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को बताइए, सबको बताइए जनाब। यहाँ पर डे स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में आ चुकी है, डे स्किन ब्यूटी क्रीम जब आ चुकी है तो छा चुकी है। यहाँ पर इरम भी हमें ज्वाइन कर चुकी है, वालेकुम अस्सलाम। और टाइम भी हुआ जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएं, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, आप जरा हमारा इंतजार कीजिएगा और थोड़ा सा, क्योंकि हम दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे जी 1:40 पर। तो आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ, आप सुन रहे हैं Whitish and D-Skin Beauty Show, sponsored by Whitish Beauty Products and D-Skin Beauty Products। इस्तेमाल कीजिए और हसीन हो जाइए।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: जा पीओ रेडी ते चारे मसाले जो बुधाइन पया, भला इहो त बुध आई वठी अच।
2: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
3: हां भाग भरी चंगो थो लगे, मां हाणे ही थो वठी अचा।
4: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को क्यों ना बताएं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही इतनी अच्छी और इतने खूबसूरत तरीके से आप लोगों को खूबसूरत बना देंगे कि आप खुद ही कहेंगे कि आए हाय चस्सी करा दी। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो एक क्रीम है ये मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई क्रीम है। अगर आप भी कोई ऐसा वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं जो सेफ हो, आपकी खूबसूरती को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो बिल्कुल जी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तरफ आ सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो बेशक लगाइए। वैसे भी आप लोगों को इस चीज के बारे में अंदाजा होना चाहिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से प्रोडक्ट से थोड़ा आपने अवॉइड करना होता है। वैसे भी जब आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट भरा पड़ा है भाई ऐसे प्रोडक्ट से, ब्यूटी प्रोडक्ट से, जो कि आप लोगों के स्किन के लिए दावा तो करते हैं कि हाँ भाई हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको देंगे, आपकी खूबसूरती ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, लेकिन जब आप उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते तो आपकी जो खूबसूरती है ना वो तो कहीं गायब हो जाती, लेकिन उल्टा आपके चेहरे पर जो है ना वो बहुत ज्यादा इस तरह के निशानात आ जाते हैं जिनका होना आपको थोड़ा सा इरिटेट कर रहा होता है, आपकी खूबसूरती जो है वो कहीं गायब सी हो जाती है और आपकी स्किन जो है वो खराब हो चुकी होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे और आपके पास कुछ अच्छे वाले प्रोडक्ट होने चाहिए तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के मेकिंग की बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको माइक्रोबीड्स फार्मुलेशन मिल रहा है और जनाब ये जनाब विटामिन बीट से भी तैयार की गई है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अल्फा आर्बुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें जो कि आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर मिलने वाली है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है ना इतनी खूबसूरती मिलती है, आपके चेहरे के डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाते हैं, आपके चेहरे की खूबसूरती जो ना वो स्टार्ट हो जाती है और आपके चेहरे पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है, आपको खूबसूरती मिलना स्टार्ट होगी सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको रिजल्ट दे रही है सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। क्या बात है भाईजान, बिल्कुल जी अगर आप 2 रातें डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मिल रही है खूबसूरती वो भी हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेंगे तो खूबसूरत होते रहेंगे जैसे और सारे प्रोडक्ट आपके साथ कर रहे होते हैं। अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं तो आपको खूबसूरती मिलती है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो आपकी खूबसूरती भी कहीं आपसे रूठ जाती है। ऐसा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मामले में हरगिज नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद होगा जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के नाम से होगा। अगर आप मार्केट जा रहे हैं आपको नहीं पता कि भाई हम कहां से जाकर परचेज करने वाले हैं, हमारे एरिया में मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि आप हमें अभी अभी सुनाया स्टार्ट कर चुके हैं, आपको नहीं मालूम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप ऐसा कीजिए अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहां से मालूम लीजिए, आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल है तो अच्छी बात है, आप परचेज कीजिए। अगर नहीं आपको मिल रहे यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे एरिया में नहीं मिलते, हमारे सिटी में नहीं मिलते हैं, तो आपको मैं नंबर बता रही हूँ, उस नंबर के ऊपर आप रابطہ कीजिएगा। नंबर्स के ऊपर जैसे ही आप रابطہ करते हैं तो आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं तो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम वहाँ मिल जाएगी। वैसे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम पाकिस्तान के अलावा बाहर के ममालकात में भी मिल रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अभी अभी बनी है, नया नया प्रोडक्ट है, ये भाई इतनी जबरदस्त क्वालिटी की प्रोडक्ट है और इतनी प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट है। और उसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालकात में भी आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी, आप इस्तेमाल करें और बाहर के लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी देखा है गोरे कितने गोरे होते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो भाईजान डायल कीजिए 03-12-50-25-907। अगर ये नंबर बंद हो, नहीं रिसीव हो, तो आपके पास दूसरा नंबर भी है जो है 03-32-73-84-309-033
7037384309. ये बिल्कुल दोनों नंबर हैं जो कि आप डायल कर सकते हैं. एक बंद होगा, एक नहीं उठाएगा, तो आप दूसरे के ऊपर ट्राई कीजिए. अगर दूसरा ना उठाए, दूसरा अगर बंद हो, तो आपको जो पहला बताया उसके ऊपर रब्ता कीजिए. एक ना एक तो खुला ही होगा, एक ही ना एक जो है ना उसके ऊपर आपको जो है ना वो अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा. आपको बताया जाएगा कि जी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, या फिर कहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं अवेलेबल तो वो वहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे. बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी मुनासिब सी कीमतों में आपको मिल रहे हैं. और जनाब मेडिकेटेड फार्मूला है, सबसे बड़ी बात, सबसे बेहतरीन बात. तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप लोगों को. डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते जाइए. अच्छा, तो बिल्कुल आप लोगों के साथ बातें हो रही हैं मेरी. मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं. वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि भाई आपको लगता होगा कि अगर हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो खूबसूरती मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो आप जरा अपनी बात कीजिए, आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं. और आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं 881 पर और फेसबुक पर. तो फेसबुक पर आइए, कमेंट कीजिए, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, दोस्तों को मेंशन कीजिए, सबको बताइए मार्केट में आ चुकी है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आ चुकी है और छा चुकी है.

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कर रही है, यहाँ पर आपके कमेंट्स हैं और क्या क्या कह रही हैं आप। बिल्कुल जी, आपके कमेंट्स की जाने बातें। और उसके अलावा अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। हाँ जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बतानी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। और खूबसूरती के मामले में हमेशा कहती हूँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।

बोलो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई या फिर नहीं? ऐसे नहीं छोड़ेंगे लगा के छोड़ेंगे. अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी फजीला. फजली कहती है अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान. कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत. आप बताएं आप कैसी हैं. कहती सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब सुनने वाली सिस्टर्स को. और फिर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ गई. हाँ जी देखें ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का. और जी हमारे साथ ही हमारी दर्दे दिल कहती है अस्सलाम वालेकुम चंदा जानी आ गई आप. माशाल्लाह माशाल्लाह. हाँ जी आइए, आप ही का इंतजार था. मैं सोच रही थी पता नहीं चंदा आएगी के नहीं. क्यों नहीं आएगी? चंदा की जिंदगी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो आ चुकी है तो चंदा को आना पड़ेगा. आप बताएं कब इस्तेमाल कर रही हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम? वैसे मीरपुर खास में तो मिल रहे होंगे अगर तो आप बताइए कब परचेज कर रही हैं. वैसे डी स्किन का फेस वॉश अगर पर्सनली बताऊं भेड़ वाली सलाह का पाई ना तो डी स्किन जो फेस वॉश यानी डिस जाओ. ओके जी अलीजा भी हमारा शो सुन रही है. अलीजा को भी वेलकम कहते हैं. अच्छा फहीम शेख हमारे साथ मौजूद ही. वालेकुम अस्सलाम मौलवी इस्लाम अदर. कहते अदा चाहला खुश सफा चाक सलेट कलम भाऊ असा भी चुप करी अमां जो शो सफर में बुधूं था कराची वनी रहा आयूं. अच्छा चुप करे ना बुधो बाबा थोड़ो थोड़ो गालायो गालाईंदा रहो छो तो हरकत में बरकत आहे. बख्त अली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, भाई को वेलकम कहते हैं. वफा मुमताज अली खोसो भाई हमें सुन रहे हैं. भाई जान खुशामदीद गोठ रईस गुलशन खोसो खां तव्हां असांखे जॉइन कयो आहे. ॿुधायो तव्हांजे ॻोठ में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी कोन? मिले थी त भली ॻाल्हि आहे, नथी मिले त पोइ तव्हांखे जेके नंबर ॿुधायां थी हुन नंबर ते राबितो कयो ऐं पंहिंजे ग़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए वठो. ठीकु आहे अचो त ही ख़ूबसूरत गानो ॿुधूं था जेको तव्हांजे नाले हूंदो.

क्या बात है, कितना खूबसूरत गाना सुन रहे हैं। खूबसूरत तो आप भी होने वाले हैं क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और सी डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ जनाब इसे जो है ना डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया। अगर आप लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता कि मेडिकेटेड फार्मूला क्या होता है, तो जनाब एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी क्रीम जिसे डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है, डॉक्टर्स का फार्मूला है। वैसे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भाई कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले जो ना थोड़ा सा घबराते हैं कि हम लगाएंगे तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी। वैसे ये चीज होनी चाहिए हर एक इंसान के अंदर। वैसे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आपके चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो थोड़ा सा मसला हो जाता है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल लगा सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन से तैयार की गई है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तो चर्चे चल रहे हैं मेरी जान। इस्तेमाल कीजिए और आपको भी पता चले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाजो प्रोडक्ट का।

अच्छा फजीला बात ये है ना कि भाई शादियों का सीजन चल रहा है तो आप बस समझ आइएगा। मैंने पहले बताया था ना कि मेरे खानदान में कुछ शादियां होने वाली हैं, तो बस वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छी बात है, ऐसे ही मतलब जिंदगी जो है ना वो सीधी सीधी जा रही थी, फिर हमारे मायट्रो ने शादियां कर ली। भाई शादियों दे ना ब्याह आते हैं ना मजो अच्छे, ये केड़ी जिंदगी आ, नचो खाओ पियो एंड स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो। अच्छा यहाँ पर फरवा कहती है कि आप ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा रशीद कोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम शाह बुखारी दरगाह से, और कहते हैं अच्छा जिला हैदराबाद से। ठीक है जी, आपका शो बहुत नाइस है, थैंक यू वेरी मच रशीद भाई, आपको वेलकम कहते हैं। और ये हमारे साथ ही स्मार्टू गोपां कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मैं लाड़काना यूनिवर्सिटी से अच्छा जा रहा हूँ कम्बर और आपका शो सुन रहा हूँ, वेरी नाइस वॉइस, सॉन्ग की आपने फरमाइश कर दी, मैं कोशिश करती हूँ आपका गाना लगाएंगे। और अखलाक भाई कहते हैं जी जी डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगा के बैठे हैं, क्या बात है जी।

पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ चुकी है जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। अच्छा, ये हमारे साथ एसएन अली बुगटी मौजूद हैं जी, लाड़काना गोठ रोहल खान बुगटी का तवा जो प्रोग्राम बुध पया, थैंक यू सो मच मोहब्बत हुआ तवा जो। और महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, कहते वेलकम बैक मैम आर जे, थैंक यू सो मच सर, आपकी मोहब्बतें हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। अखलाक भाई कहते हैं सियारो अच्छी वयो बाबा, थोड़ो थोड़ो आयो आना थोड़ो थोड़ो पंध में आ तरी ते चवां थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए छो त खोड़ माण्हुनि जी इहा हिकिड़ी रुटीन हूंदी आहे, त जीअं सियारो ईंदो आहे या सियारे में खोड़ माण्हू जेके न पंहिंजे चेहरे जी केयर कंदा आहिनि सफ़ा घणी, हू क्रीमूं लॻाईंदा आहिनि ऐं हू चवंदा आहिनि त भई कोई भलो प्रोडक्ट असां वटि हुजे जेको असां सियारे में लॻाए सघूं, छो त सियारो तक़रीबन मूंखे लॻंदो आहे त सियारो जेको न सीज़न हूंदो आहे छाजो क्रीम्स यूस करण जो। तो अगर तव्हां बि सियारे जो इंतज़ार कयो था या तव्हां वटि बि सियारो अची वियो आहे त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाज़मी वठो बाबा, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो पिया त डी स्किन जो फेस वॉश हुन सां गॾु लाज़मी वठिजो। ऐं डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे न, इन जे बारे में तव्हांखे थोरो ॿुधाईंदी हलां त डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे, सभ खां पहिरीं ॻाल्हि त डी स्किन फेस वॉश जेको आहे तयारु थियल आहे बाबा हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां, ऐं हिन जो जेको फार्मूलो आहे न उहो एतिरो ज़बरदस्त रखियो वियो आहे, अगरि तव्हां यूज़ कयो पिया या तव्हां यूज़ करण जी तयारी में आहियो त जल्दी कयो बाबा, ही ॾाढो सुठो मौको आहे, इन खे हथ मां न विञाइजो। ऐं हाणे वञो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते, उतां मालूमात वठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश मिले थो कोन, ऐं नालो वठी करे उन्हनि खां तलब कजो, छो त कुझु वरी दुकानदार अहिड़ा हूंदा आहिनि थोरा हो हूंदा आहिनि, मतिलबु थोरा छा चवंदा आहिनि टोपीबाज़, अगरि तव्हां हुननि वटि वञो था ऐं चओ था दादा असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश ॾे, त हू वरी चवंदा उन्हनि वटि न हूंदो न प्रोडक्ट, चवंदा भाउ तव्हां हीउ प्रोडक्ट खणी वञो, हीउ हले वठो, हीउ भलो अथव, हीउ हीअं करे छॾींदो हूअं करे छॾींदो, उनखे तव्हां चइजो अदा फुल स्टॉप लॻाए असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश ई खपे, ॻाल्हि ख़तम। अगरि तव्हां वटि नाहे त तव्हां पंहिंजी दुकान ते अवेलेबल कराए वठो, ऐं पोइ जेके नंबर तव्हांखे प्रोग्राम ॿुधायां थी उहे नंबर तव्हां भाउ खे ॾेई छो, ऐं चओसि अदा हिन नंबर ते राबितो कयो, ऐं हिन भाउ साहब खे ॿुधायो त तव्हां हीउ नंबर ते राबितो करे तव्हां पंहिंजे ॻोठ में तव्हां पंहिंजे दुकाननि ते अवेलेबल कराए सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश, छो त तव्हांजे दुकाननि ते बि अवेलेबल हूंदा त तव्हांखे बि फ़ाइदो पवंदो, समझो था। जेके बि दुकानदार भाइर असांखे ॿुधनि पिया हू नंबर से राबितो करे पंहिंजे दुकाननि ते तव्हां अवेलेबल कराए सघो था, जे तव्हांखे बि थोरो कूड़ न ॻाल्हाइणो पवे। दुकानदार बि ईअं कंदा आहिनि त बाबा को प्रोडक्ट नाहे हुननि वटि, त हू चवंदा आहिनि ग्राहक जेको आहे न इहो खाली हथु न वञे, त हुननि खे खाली हथु बेशक तव्हां न मोटायो पर तव्हां वटि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश हुजणु लाज़मी आहे। सो बिल्कुलु खोड़ ॻाल्हियूं कंदासीं तव्हां सां, तव्हांजो असांजो साथ प्रोग्राम में पूरे टे बजे ताईं हूंदो, तव्हांजो असांजो साथ टे बजे ताईं हूंदो, पर तव्हां असां सां गॾु हूंदा न, इहो तव्हां मूंखे ॿुधायो, ऐं टॉपिक ते बि ॻाल्हायो थोरो, तव्हां पंहिंजे ख़ूबसूरती जो ख़्यालु कीअं रखंदा आहियो। हिते टाइम थियो आहे ज़रा न्यूज़ ब्रेक वठूं था, हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा, वापसी तव्हांजी मोटी अचूं था, कारी न वञो इते वेठा हुजो, ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी, सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इस्लामाबाद के इंतजामी मॉडल बनाने की तैयारी मुकम्मल थी चुकी है। कमेटी में लंदन, वाशिंगटन और दिल्ली मॉडल से बहस कयो वयो। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी चयो आहे त ड्राफ्ट सभी पार्टियों से शेयर कयो वेंदो। इत्तेफाक राय का पोए बियो मरलो शुरू थींदो। रेफरेंडम जो बियो नालो अवाम जी राय आहे। पीटीआई पारा सूबन के विरहांगे के मुखालफत। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा चयो आहे त 73 जे आईन खिलाफ वही सूबन के विरहांगे की हिमायत न कंदासी। आईन वाज़े आहे त सूबे के विरहांगे लाइ लागापियल सूबे की असेंबली ही मंजूरी कंदी। पाकिस्तान कश्मीर बाबत भारतीय बयान के रद्द करे छो। आलमी बिरादरी का नोटिस जो मुतालबो। परे ऑफिस मूजिब एक तरफ का तकरारी कदम वलारियल कश्मीर की हैसियत तब्दील नथा करे सघन। ही मामलो गड़ियल कौमन की सलामती काउंसिल के एजेंडा जो हिस्सो आहे। भारत कश्मीरी अवाम के हक देण जा वायदा पूरा करे।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 0300-310-509-0300-310-5109।
2: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए, अम्हां के खुशहाल बनाए। हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश, ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
5: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
6: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा।
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी। जल्दी आए
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
8: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
9: 03013992836
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94।

सभिनी खां निरालो बणाए छॾियो आहे. त अगरि तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणु चाहियो था या डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻाइणु चाहियो था त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु लाज़मी कयो. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी स्किन खे मॉइस्चराइज़ रखंदी आहे, तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट रखंदी आहे ऐं तव्हांजी स्किन खे सफ़ा प्यारो गोरो चिटो बणाए छॾींदी आहे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द मायूं सभु लॻाए सघो था. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा बि बहितरीन ॻाल्हि आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम अहिड़ो प्रोडक्ट नाहे त हिन खे बाबा नयों तयारु कयो वियो आहे या कोई लोकल प्रोडक्ट आहे. ही तमामु खूबसूरत प्रोडक्ट आहे, इंटरनेशनल प्रोडक्ट आहे ऐं न सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि ॿाहिरि बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमालु कयो वेंदो आहे. सो तमामु प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे. जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त सिद्रा बाबा जेको प्रोडक्ट ॿुधाए थी वाह जो प्रोडक्ट आहे. डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश जेको तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां वठी सघो था. अगरि नथा मिलनि, अगरि तव्हां फ़र्ज़ कयो तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते प्रोडक्ट अवेलेबल कोन आहिनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश, त पोइ तव्हांखे डायल करिणो आहे नंबर जेको मां तव्हांखे ॿुधायां थी. ऐं नंबर ते तव्हां राबितो लाज़मी कंदा कयो जीअं तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते ही तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वञनि. ओके जी, सो नंबर जेको पहिरियों आहे उहो तव्हांखे डायल करिणो आहे 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-45-90 थोरा ग़लति हो गया. ओके जी, ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09. इहो नंबर आहे जेको तव्हां डायल करे सघो था ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था. पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो जीअं तव्हांखे ख़बर पए बाबा त डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाणे हिते बि मिले थी, हुते बि मिले थी, ओ हुते बि मिले थी. ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में त खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं तव्हां सां कंदा रहंदासीं बाबा. पूरो प्रोग्राम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे नाले आहे. तव्हां असां सां गॾु मौजूदु आहियो त तव्हांखे बि शामिल प्रोग्राम कयूं था. तव्हां मां खोड़ सारे माण्हू जा असांखे कॉमेंट्स ऐं मैसेजेस मिलंदा वञनि था. सो ॾिसूं था केरु केरु असां सां गॾु आहे, किथां किथां तव्हां असांखे जॉइन कयो आहे. सो यस, असांखे हिते जॉइन कयो आहे मुख़्तियार अली लाशारी भा. वालेकुम अस्सलाम मदीना मुनवरा खां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया, थैंक यू वेरी मच. तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि. शौकत अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम. और जी जाहिद अली बुर्दी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम. मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं. और हमारे साथी जी सागर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. काफी वक्त खां पोए अज कार में रेडियो हलायो, सो तमां जो प्रोग्राम हले पयो, पो भला शामिल कयो प्रोग्राम में, सुठड़ो गानो भी बुधरायो. बिल्कुल जी, तमां के शामिल भी कयो.

अच्छा हीअ असां सां गॾु मौजूदु आहे ॻोठ बखूदेरो बाकराणी ओके आगे तव्हां लाइ छा लिखियो आहे शेर खान जतोई असां सां गॾु मौजूदु आहे और अबूज़र जतोई अबूज़र जतोई और समीना जतोई शानज़े जतोई अव्हां खे ॿुधूं पिया अदे कीअं आहियो असां असांखे तव्हांजो खिलणु वणंदो आहे अच्छा तव्हांखे खिलणु वणंदो आहे थैंक यू वेरी मच पर जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदा पोइ तव्हां सभिनीनि खे वणंदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु लाज़मी करे ॾिसजो ऐं अल्ताफ़ बलोच जागजानी हमारे साथ कहते हैं प्लीज़ प्ले शमन शमन हाज़िर तव्हांखे ॿुधायूं था ऐं डेडिकेट अज़रा खोसो बिस्मिल एंड मी ओके थैंक यू और कहते हैं दोबारा आपने अच्छा दूसरी फरमाइश अगर वो ना प्ले हो सके तो ये वाला लगा दीजिएगा डेडिकेट किया है डॉक्टर नजमा तबस्सुम बिस्मिल रफीक एंड मी ओके थैंक यू प्यारे चाचू को वेलकम कहते हैं अच्छा कश्मोर से भाई आपने अखलाक भाई ने भी गाने की फरमाइश करी है क्या बात है जी गाना लगाते हैं आपका ज्वेलरी का खालिक लाशारी है कहते शो तव्हांजो वी आई पी आहे शमन जो गानो ॿुधाए जो अंदाज़ तुंहिंजा मूंखे वणी विया मां ॾिसां थी इहो गानो अगरि मिली वियो त बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधायूं था बाबा और ऐसे शो ख़ालिद अली हमारे साथ है ख़ालिद आलम खान है ओके जी ख़ालिद आलम खान मोहम्मद खान आप दोनों को वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है और जी समीउल्ला हमें सुन रहे हैं समीउल्ला कहते हैं हाय हम कह रहे हैं हेलो मोहम्मद मीरन जगरानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आवाज़ से भाई जान कैसे हैं ठीक ठाक है और हिदायतुल्ला कहते हैं सलाम इतना बड़ा हाँ जी आप भी गोरे हो जाएंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो हिदायतुल्ला लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा और लुबी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी है वालेकुम अस्सलाम सिडो जानी क्या हाल है मैं भी आपके साथ साथ हूँ नाइस यू थैंक यू वेरी मच लुबना और गुलाब खान गुलाब गुल हमारे साथ हैं गुलाब गुल कहते हैं सलामी मोहब्बत बाजी दादू सिंध से गुलाब गुल आपका शो सुन रहे हैं और डॉक्टर कुर्बान अली कमरानी गुड शो नाइस होस्टिंग थैंक यू वेरी मच आप भाइयों को वेलकम कहते हैं सुमाटू लिखते हैं कि आपके नाम से होनी चाहिए क्रीम सिद्रा ब्यूटी क्रीम कितनी जबरदस्त लग रही है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो तव्हांखे खबर पइजी वेंदी त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो केॾो फ़ाइदो आहे ऐं तव्हांखे तॾहिं मिलंदो न जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे ॾिसंदा ऐं मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो पिया त तव्हां पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु कीअं रखंदा आहियो वैसे ख़ूबसूरती जो ख़्यालु त हर कंहिंखे रखणु घुरिजे अगरि तव्हां मर्द आहियो तव्हां ख़वातीन आहियो हर कोई बाबा पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम खां वधीक छा ई प्रोडक्ट आहे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो जीअं तव्हांखे ख़बर पए त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी वाह वाह छा

राजा सागर भाई कहते हैं गिफ्ट कयो ना एक त लगाए दिसूं फेस वॉश भी हा हा सब इते मुफ्त जे माल ते वेठा है पांजी वटो खबर पए वैसे एतरी महंगी कोने का ता मतलब थोड़ी कंजूसी कयो था कंजूसी न कयो बाबा पाने खूबसूरती सा केड़ा लेख

शुक्रिया जी, ॾाढो भलो गानो जेको असां एंजॉय कयूं पिया. प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं. अच्छा, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए, बाकी सारे दोस्तों को भी मेंशन कीजिए, उनको भी पता चले कि भाई जान मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम चल रही है. तो अब भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाइए, वहां से मालूम लीजिए, आपको मिल जाएंगे. अगर नहीं मिल रहे तो जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम में वो जरा डायल कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, उनको बताइए कि हम भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और साथ में डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश हो जाएगा तो भाई क्या ही बात हो जाएगी. तो दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए. ओके जी, महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ कहते नाइस शो, ग्रेट होस्टिंग एंड ग्रेट प्रोडक्ट्स डी स्किन ब्यूटी क्रीम. बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, कोई शक नहीं इस प्रोडक्ट में. भाई पाण असां इस्तेमाल कंदा आहियूं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ऐं पर्सनली हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त मुंहिंजो जीजू बि इस्तेमाल कंदो आहे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो एॾो वॾो फैन आहे. मां पुछांसि पई भाउ एॾा ई सफ़ा चिमको था, चए बाबा इहो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां भी इस्तेमाल करणु चाहियो था त तव्हां पाण बिल्कुलु इस्तेमाल कयो. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मुनासिब क़ीमतुनि में मिली रही आहे, थोरो पाण ते ख़र्चो कंदा कयो, ॾाढी

वाह साईं वाह ॾाढो भलो गानो ॿुधो से ॿियो गानो असांजी लिस्ट में आहे जी गानो हूंदो मंज़ूर सखराणी जी आवाज़ हिन गाने खे बि ॿुधंदासीं ऐं ॾाढो भलो गानो आहे तव्हांखे यादि ॾियारे छॾींदो सोचो त इंजॉय कयो प्रोग्राम सुन रखे

आंजी ही गानों ने माना जलाया है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर पाया। अगर तहां भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया पे तो बुदायो बाबा बुदायो शर्मायो चौथा। अच्छा ये हमारे साथ है महबूब अली मोरो सिटी से, कहते सिस्टर सिद्रा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपकी कंपेयरिंग माशाल्लाह जीती रहे। और सिद्रा सॉन्ग सुनाए जिसमें तू न हुजे एड़ी दिल काडे कंदासी। अच्छा ठीक है मां ॾिसां थी तव्हां जो गानो हली वियो त बिल्कुल हलायूं था। अल्ताफ अलो जाग जानी चाचू लिखते हैं कि प्ले शमन हाजिर चाचू हलायूं था थोड़ो सब्र कयो। मकसूद मल्हा कहते हैं मैं तो ऐसा ही है बिल्कुल जी। अब आप चश्मा लगा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई।

ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣੋ ਆ ਤੂੰ अगर ना भी सोना तो का गाल कोने का बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आए वनो वठी जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो ए सोना थी वनो अच्छा समीरो चौहान हमें सुन रहे हैं मिठी से आप हमारा शो सुन रहे हैं ओके जी बहुत शुक्रिया आपको वेलकम कहते हैं ओके जी हिदायतुल्ला कहते हैं मैं आपको पता है इतने दिन से आपका शो क्यों नहीं अच्छा शामिल क्यों नहीं हो पा रहे थे सही है जी सिखो ना पो कदी सिखंदो बाकी अच्छा सागर भाई कहते हैं इंशाल्लाह वठी अचबो जरूर यो ठीक आयो अल्हम्दुलिल्लाह मजे में तां बुदायो कारे गुम थी वेंदा आयो बाबा प्रोग्राम में शामिल थींदा रहंदा कयो ये मानो खबर पंदी आ त मार्केट में केड़ा केड़ा प्रोडक्ट हलंदा अच्छा अगर एकड़ी या भी गाल आए मैं हमेशा तवा सा कंदी आ अगर तवा पाण कोई प्रोडक्ट नथा लगाए सको यानी कुछ मानन के सफा घणो स्किन जो प्रॉब्लम होंदो आए हु न कोई प्रोडक्ट लगाए सकन आए तो चलो अगर तवा नथा लगाए सको तो तवा ही जके प्यारा प्यारा प्रोडक्ट आ है डी स्किन ब्यूटी क्रीम थी वई डी स्किन फेस वॉश थी वयो इन के तवा के ही पांजे पिरी प्यारे के गिफ्ट भी दई सको था समझो दा अगर ता पाण नथा लगाए सको तो ता के गिफ्ट दई सडियो यो माना बराबर थी दो हिसाब ता लगाए या को लगाए तो तुम पान न था लगाए सको तो तुम प्यारे पीढ़ी के गिफ्ट करे छो वाह वाह थी वेंदी अच्छा गुलाब भा तुम मोहब्बत है तुम प्रोग्राम आने पो थैंक यू अच्छा ये मुगल उमरानी भाई हमारे साथ हैं वेलकम कहते हैं भाई को चलें यहाँ पर आप ये गाना एंजॉय कीजिए जरा और बिलाल अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं वालेकुम अस्सलाम बिलाल अली हम यहाँ पर ले रहे हैं जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिएगा सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए मैं जरा यूँ जाकर यूँ वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए

0: It's 2:30 p.m.
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-335-69।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सखरन मेहरावपुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इतावन से। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जरा आप लोगों के साथ बातें हो रही हैं हमारी और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा हम आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे। वैसे तो आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे हमें पहली मरतबा सुन रहे होंगे या जो बहुत ज्यादा टाइम के बाद हमारे प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, तो ये वाली चीज भी आ जाती है कि उनको बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई आपको भी पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तमा की भी खबर अजन घुर्जे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा केतरा सारा फायदा चले तव डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना तो तवा के केतरी सारी खूबसूरती मिली सके थी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपकी खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर में आपने लाजमी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को शामिल कर लेना है, क्योंकि इसका जो फार्मूला है ना वो इतना जबरदस्त रखा गया है। ये बात तो आप बिल्कुल जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है और इसे जनाब तमाम डॉक्टर्स की स्किन केयर के जो डॉक्टर होते हैं ना, यानी कि जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनकी निगरानी के अंदर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। और साथ ही साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है और साथ ही साथ ना सिर्फ पाकिस्तान में आपको मिल रही है बल्कि बाहर की ममालकात में भी आपको मिल जाएगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के ये भी खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के इस्तेमाल के बाद आपको फौरी जो है ना वो निखार देती है और बहुत अच्छा वाला निखार देती है। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है ना वाइटामिन ई बीड्स के बारे में बताती चलूं। जैसे कि मैं आपको बताती हूं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, तो आप लोगों ने ये चीज जरा देखी होगी कि जो खवातीन फेशियल वगैरह करवाती हैं और फेशियल के अंदर होता है ना कि आपको लगता है कि भाई फेशियल कराने से जो है ना स्किन आपकी ज्यादा निखर आती है, ग्लो आता है आपके चेहरे पर, आपकी स्किन जो है वो जरा अच्छी हो जाती है बहुत ज्यादा। अगर आप कोई भी ब्यूटी क्रीम लगाते तो वैसा आपको निखार नहीं मिलेगा जो आपको फेशियल से निखार मिल रहा होता है, खास करके जो खवातीन मुझे सुन रही है। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करती तो इसके अंदर जो ये वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन रखे गए हैं, एड किए गए हैं, तो इसका बिल्कुल यही काम है कि आपकी स्किन को इस तरह खूबसूरत बनाए, इस तरह प्यारा बनाए, इस तरह आपके चेहरे पर ग्लो आ जाए, इस तरह आपके चेहरे की स्किन टाइट हो जाती है, आपके चेहरे के जो रिंकल्स वगैरह होते हैं वो घटना शुरू हो जाती है, आपके चेहरे पर जो निशानात होते हैं या एक्नी के निशानात होते हैं ये तमाम चीजें भी रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको मिलती है एक परफेक्ट वाली खूबसूरती। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि ऐसा वाला कोई प्रोडक्ट होना चाहिए आपको लगता है कि भाई जो हम इस्तेमाल करें हमारी चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ती रहे, खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे और इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं हो, तो बिल्कुल आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट साबित होने वाला है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अच्छे से जानते हैं डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा वाला रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन आपको तरीकेकार नहीं मालूम, तो तरीकेकार भी थोड़े से बताते चलें। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सोने से पहले ये एक नाइट क्रीम है। वैसे तो कहते हैं ना नाइट क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको केयर जो है ना वो इस तरह से करनी होती है कि आप सबसे पहले अपना फेस वॉश कराते हैं। और अगर आप डी स्किन फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना फेस वॉश कीजिए डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद चेहरे को अच्छे से सुखा लीजिए। वैसे ये भी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप कोई फेस वॉश यूज कर रहे हैं या नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं तो आप जो है ना अपने चेहरे को ज्यादा ऐसे मसाज नहीं किया करें। मसाज जो अगर आप अपने चेहरे को करते हैं, जो फेस वॉश भी करते हैं, तो फेस को रगड़ रहे होते हैं बहुत ज्यादा तेजी से, तो ऐसे नहीं किया करें। सॉफ्टली आप अपने हाथों को अपने चेहरे पर ऐसे राउंड राउंड करके घुमाया करें और अच्छे से वॉश किया करें और पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया करें। पानी जो है ना वो अगर ऐसा वाला सीन है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट रहती है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे चीज होगी, रूखी सूखी सी स्किन है, इसको कैसे सही किया जा सकता है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से फौरन बाद आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्किन ग्लोइंग होना स्टार्ट हो जाती है और आपके चेहरे पर आती है वो खूबसूरती जो कि खवातीन बहुत ज्यादा वाले पैसे देकर फेशियल करवा के आती है ना, बिल्कुल वैसी खूबसूरती। अगर आप भी चाहती हैं घर बैठे मुनासिब सी कीमतों में बिना टाइम को जाया किए आपको मिले खूबसूरती अच्छी वाली और महफूज वाली खूबसूरती, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये खवातीन के लिए भी है और मर्द हजरात के लिए भी है. ऐसा नहीं कि अब मर्द हजरात सोचें कि हम लगाएं या ना लगाएं क्योंकि खवातीन की बातें हो रही हैं. तो ऐसा कोई सी नहीं है. आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं. मर्द हजरात खवातीन हर किसी की स्किन के मुताबिक है जनाब, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार ही किया है स्किन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, बिल्कुल उन्होंने. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, आप दिल खोल कर इस्तेमाल कीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाले हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है. तो दोनों चीजें साथ में लगाइए, खूबसूरत हो जाइए और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जाइए.

सोमी जी क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराना चाहते हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन आपके गोट में नहीं मिल रही, आपके गाँव में नहीं मिल रही, आपके करीबी जनरल स्टोर पर नहीं मिल रही, आपके सिटी में नहीं अवेलेबल, तो जल्दी से डायल कीजिए जनाब, जो नंबर अभी आपको बताने लगी हूँ, और नंबर के ऊपर रابطہ करेंगे तो फौरन ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा दी जाएगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और उन्हें भी पता चलेगा कि कहां कहां पर अभी तक अवेलेबल करानी बाकी रहती है। तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 और दूसरा नंबर है 03-27-38-43-09 बिल्कुल जी, यही नंबर से जो कि आप डायल करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो जाएगी। तो जल्दी से अवेलेबल कराइए, खूबसूरती का ख्याल रखिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए।

ओके जी, क्या बात है, जिंदाबाद थई जवानी जिंदाबाद, बहुत ही प्यारा गाना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने पा जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी दर्दे दिल हमें ज्वाइन कर चुकी है और लिखती है कि चंदा चले इस बात को तो छोड़ ही दें, और कहती मेरी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि मैं अपनी पसंदीदा इंसान के साथ बेतहाशा बातें कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे पसंद नहीं तो मैं उसके सामने मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर लेती हूँ। क्या ही बात है जी, बहुत बढ़िया, आपको वेलकम कहती है स्वीटी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं जी मायरा, हमारा शो सुन रही है। मायरा वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, कहती है मैं भी बाजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाऊंगी, और आप बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिएगा। वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा, ऐसा वाला सीन बन जाएगा ना कि, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना माइक्रो बीट्स हैं, विटामिन ई बीट्स हैं, और ये जो तमाम चीजें हैं ना, ये जब इसके अंदर ऐड की गई हैं तो क्रीम की जो खूबसूरती है ना वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगी ऐसी वाली खूबसूरती जो कि खवातीन बहुत ज्यादा महंगे महंगे फेशियल करवाने के बाद भी नहीं हासिल कर पाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपका टाइम भी बचाएगी, आपके पैसे भी बचाएगी, और आप घर बैठे मुकम्मल खूबसूरत हो जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको अच्छी वाले रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप ट्राई करके देखिए, जो कि एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और जनाब उसके अलावा मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं।

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे सॉन्ग सुनकर कोकिला याद आ गई. वही तो मैंने पहले ही बोला था. फरवा गुला में सुन रही थी आप ही, आपका शो बड़ा सुपर डुपर जबरदस्त है, थैंक यू वेरी मच फरवा. और बिलाल कहते हैं कोई प्यारो पिरी कोन्हे को छो भला कोन्हे को ये सफा ये न क्यों बाबा.

ओके जी, महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथ कहते हैं कुंज, आप सॉन्ग भूल गई। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। चले अगर आप मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे तो आपका गाना लगाएं, कि नहीं तो मैं कल आने वाली हूँ ना, तो कल आपका गाना सुनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है। अच्छा फरवा, आप हमें सुन रही हैं तो आपने जो गाना बोला था ना, वो मैं आपको 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुना दूंगी। वैसे जो आपने फरमाइश करी थी वो इस तरह की थी, वो टोन उसका ऐसा था कि वो 5 बजे वाले प्रोग्राम में ही सुना जाए तो अच्छा था। ओके जी, आप क्या करेंगे, फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ हैं, जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। ऐसे ये होता है कि भाई हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं ना, उन तक हमारा प्रोग्राम पहुंच जाता है और वो भी इस चीज को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि उनको अपनी स्किन केयर कैसे करनी चाहिए, खूबसूरती के मामले में कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, और खूबसूरती के मामले में अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो क्या ही बात है जनाब। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अच्छे से जानते हैं जनाब, ये मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार किया गया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती जो आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। चाहे आप खवातीन हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं, हर किसी के स्किन के हिसाब से डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप जानते ही जनाब कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, अल्फा आरबुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें एड की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। तो जान लें और पहचान लें कि इतना प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, तो फायदा उठाइए।

जी ओ जी, बड़ा प्यारा गाना था जो हमने एंजॉय किया। और इसी के साथ साथ एक और प्यारा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि शायद बब्बर की आवाज में होने वाला है। इस गाने की भी किसी भाई ने मुझे फरमाइश कर दी थी, तो जरा हम मिलकर एंजॉय करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हैं जी रमीज नहीं रमजान अली भाई। रमजान भाई कहते हैं कि दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया, मुझे दिल लगाने का नतीजा मिल गया। अरे मैं रोता हूँ मेरा दिल गया, तू क्यों मुस्कुरा रही है, तुझे क्या मिल गया। क्या बात है जी, क्या बात है। और फरवा की थी आप ही ठीक है, थैंक यू वेरी मच फरवा। अखलाक भाई कहते हैं मूव इट शेर जो ऑप्शन ना है ये ना क्यों बाबा सबने वट ऑप्शन आई, ये बहानेबाजी बंद करो। और रमजान भाई कहते हैं बहन इतने दिन कहाँ गुम थी आप, मैं तो यहीं पर थी। और ये चाचा खालिद कहते हैं अल्लाह हाफिज बेटा से जो टेक केयर। आप भी चाचा अपना ख्याल रखिए, वैसे आपने अपनी तबियत के बारे में तो बताया नहीं। फिर कहते हैं कि भाईटी वेगी भाईटी मुझे तबियत जो पूछे ही कौन थी। अच्छा रशीद खोसू भाई कहते हैं बहुत अच्छा बलोची सॉन्ग है ना, बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आप सारे भाइयों को वेलकम कहते हैं। वैसे भाई डे स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करके देखिए, और डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले जितनी भी लोग हैं वो बहुत सेटिस्फाइड है, तो आप भी डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए। फजली कहती है ओए प्यारी लगता है पता नहीं अब क्या मसला है, कुछ तो है, लेकिन चलें फिर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना वो इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है।

टाइम भी तेजी से गुजरता जा रहा है. हमारे यहाँ पर मोकलानी का टाइम हो चुका है. इजाजत वठंदासी तव्हां खां. मुखलिस मोहम्मद हाशिम सुमरो अस से गड मौजूद आए. आई तव्हां असां के किथां खां जॉइन कयो आहे. तव्हां सां गड आहे शहजादो गुलफाम एंड शहजादा गुलमुनीर सुमरो टंडो मोहम्मद खान से बेहतरीन शो मोहतरमा आरजे साहिबा. थैंक यू वेरी मच जी, आप भाइयों को वेलकम कहते हैं. वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है जी मुनासिब सी कीमतों में. बस अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहां से मालूम लीजिए मिल रही है तो बढ़िया, नहीं मिल रही तो जो नंबर आपको बता रहे हो उसके ऊपर रब्ता कीजिएगा. भाई साहब का जीना हराम कीजिए जब तक आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं करा देते. तो जल्दी से नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि फलां जगह पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है. और इसी के साथ साथ वरी तमाम से मुलाकात मुझे थे पई बाबू 5 बजे वाले प्रोग्राम में. सो पांजो ओ हीरो सरो ख्याल रखना. कहते का गलती थी मुझे तो माजरत कयो था, जिला फीडबैक रहजी वया है जिनजा गाना रहजी वया है सबने का माजरत कयो था. सो मोकलानी नाही बाबू सिन सलामत सा सलामत. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खैराती मैंडेट ते आयल वफाकी वजीर अरणी तरमी में सूबन ते गालाए रहा है। खैराती मैंडेट एम फॉरम 47 ते आयल कौम जा फैसला न कंदा तेरी ही अवाम वट वजन मैंडेट वठन कोए गालियों कन कौम जा फैसला फॉरम 47 वारा न पर अवाम जा चूंडल नुमाइंदा कंदा। सिंध असेंबली में गालाइंदे सीनियर वजीर शर्जी लीना मेमण चयो आहे त वफाकी वजीरन खे गालाइणो आहे त पार्लियामेंट में गालाइन त खेन जवाब भी मिले, बाकी मीडिया ते गालाइण सां कुझु बि न थींदो। वफाक सिंध में 77 सालनि खां हिकु ॿिए मोटरवे नाहे ठाहियो। सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी। बिजली बि सिंध समूरे मुल्क खे ॾेई रही आहे पर हिते लोड शेडिंग सभिनी खां वधीक आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी यूरोप जो दौरो मुख़्तसिर करे छॾियो, सुभाणे ॾे वापसीअ जा इम्कान। ज़रियनि जो चवणु आहे त सदर आसिफ अली ज़रदारी ॿिनि ॾींहनि खां फ्रांस वञणो हो, हाणे सदर फ्रांस जो दौरो मुल्तवी करे सुभाणे लंडन खां ॾे वापसि अचण जो फ़ैसिलो कयो आहे। अमेरिका सां इतिहाद अहम आहे पर अरब मुल्कनि खे पंहिंजी हिफ़ाज़त लाइ पाण भरो थियणो पवंदो। कतरी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान मजीद लन चयो आहे त रुगो अरब मुल्कनि खे अमेरिका ते भारण बदिरां स्ट्रेटेजिक मामलनि में पाण भरो थियणो पवंदो। सिक्योरिटी मामलनि में वधण सां ई दिफ़ाई यकीनी बणाए सघिजे थी। पीटीआई अवाम जी मर्ज़ी बिना सूबनि जे विरांगे जी मुखालफ़त करे छॾी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त अवाम जी मर्ज़ी बिना सिंध जो विरांगो थियो त वफ़ाक कमज़ोर थींदो। सूबनि जे क़याम बाबति तकरारी कानून साज़ी न थियणु घुर्जे, हीउ संजीदा मामिलो आहे, बहस थियणु घुर्जे। सलमान अकरम राजा चयो आहे त 73 जे आइन ख़िलाफ़ वञी सूबनि जे विरांगे जी हिमायत न कंदासीं। आइन वाज़े आहे त सूबे जे विरांगे लाइ लाॻापियल सूबे जी असेंबली मंज़ूरी ॾींदी। पाकिस्तान भारती बयान खे रद्द करे छॾियो। आलमी बिरादरी खां नोटिस जो मुतालबो, परडे ऑफिस मूजिब हिकु तरफ़ खां तकरारी क़दम वलारियल कश्मीर जी हैसियत तब्दील नथा करे सघनि। ही मामिलो घरियल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल जे एजेंडा जो हिसो आहे। भारत कश्मीरी अवाम खे हक़ ॾियण जा वाइदा पूरा करे। सप्टम्बर ऐं मई वारे जंगनि में पाक फिज़ाए जे शाहिननि आला किरदार अदा कयो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं सदर आसिफ अली ज़रदारी जो फिज़ाए जे लियाड़े ते पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त हक़ वारी जंग में साबित थियो त दुश्मन केॾो बि ताक़तवर हुजे असांजे अज़म खे शिकस्त नथो ॾेई सघे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाक फिज़ाए जे शाहिननि पंहिंजे पेशावराणी सलाहियत महारत पाण मञाई आहे। सप्टम्बर ऐं मई वारी जंग में दुश्मन खे शिकस्त ॾिनी। लाहौर पुलिस पीटीआई जे गिरफ़्तार हमाद अज़हर जी गिरफ़्तारी ज़ाहिर करे छॾी। लाहौर पुलिस मूजिब हमाद अज़हर 18 केसनि में घुर्बल आहे ऐं 3 सालनि खां रूपोश हो। जांच पुलिस हमाद अज़हर खे गिरफ़्तार कयो आहे। हाणे हमाद खे रिमांड लाइ अदालत में पेश कयो वेंदो। कराची में शाहरा फैसल ते परडे ऑफिस ॿाहिरां एहतजाज करण तां गिरफ़्तार कयल शहरी आज़ाद सोमयाली सामूंडी धाड़ेलनि हथां जर्गमाल बणायल पाकिस्तानियुनि जे वारसनि खे पुलिस आज़ाद करे सामान बि वापसि करे छॾियो। मुगविन जे वारसनि प्यारनि जी आज़ादी जे लाइ एहतजाज कयो हो। मीर रज़ा केस बाबति अदालती कमिशनरो मीर रज़ा जा वारिस ऐं दोस्त पेस कमीशन मीर रज़ा जे दोस्त खां सवाल कयो, तव्हांखे कीअं ख़बर पई त मीर रज़ा गुम थी वियो? दोस्त जवाब ॾिनो त मीर रज़ा जी मङेंदी ॿुधायो आहे त आख़िरी भेरो मीर रज़ा सां मुलाक़ात 28 जुलाई ते थी हुई। ककड़ भरिसां कलोई बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में थियल झेड़े दौरान मारिजी वियल नौजवान जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। नौजवान जाफर कलोई जे वारसनि लाश रखी धरणो हयो। नौजवान खे क़तल कंदड़ जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो, एहतियात जारी रखण जो चिताव। सकरण वेझो ॻोठ रहमू किरियो में एचआईवी जा वधीक 13 नवां केस ज़ाहिर। ॻोठ में एचआईवी मरीज़नि जो अंगु वधी 33 थी वियो। ॻोठाणनि एसयूपी समेत मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अॻवाननि जो मुतासिर मरीज़नि जो इलाज न थियण ख़िलाफ़ एहतियात। मुतासिर मरीज़नि खे इलाज जूं सहूलियतूं ऐं दवाऊं ॾियण जो मुतालबो। लाड़काण जे एयरपोर्ट थाणे जी हद मां ॿ वापारी अॻवा वलड़े जी वासी नवाब अली सुमरो ऐं संदसि दोस्त पीपी अॻवान दीदार अली बहन गाड़ी समेत अगवा कयो वयो। अगवा जी इतलाबाद पुलिस जांच शुरू करे छी। बुधायो पियो वञे त मुगविन जी गाड़ी बलोचिस्तान वारे एरिया मां हथ आई आहे, जॾहिं त ॿिन्ही मुगविन जा घर भाती सख परेशान आहिनि। दड़ो भरसा भाव हथा भेण कतल, घोट मौलवी अहमद भरसा जवाबदार खलील मगज़ी फायरिंग करे भेण दुआ के कतल कयो, जवाबदार फरार थी वयो, कारण मालूम न थियो। शहजादकोट में क्रिकेट रांद खेलण दौरान ॿारनि जी ॻाल्हि तां जहिड़ो लठियूं ऐं सरोटा लॻण सां वठ ॼणा ज़ख़्मी। लगारी भटी चांडिया बरोई बिरादरी जे माण्हुनि में जहिड़ो, लगारी बिरादरी जे माण्हुनि केस धरना दाख़िल थियण ख़िलाफ़। मस्तोई मोहला में रोड ते धरणो आयो, केस दाख़िल करे जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। फैज़गंज ऐं भरपासे में मंशियात जे आज़ार ख़िलाफ़ शहरनि जो पका चांग एहतजाज। इलाइक़े में मंशियात जा मौजूदा अॾा बंदि करण जो मुतालबो। मुज़ाहिरीन चयो त मंशियात पुलिस जी सरपरस्ते में हली रही आहे। शहरनि सां गॾु ॻोठनि में मंशियात जा अॾा क़ाइम कया विया आहिनि। मंशियात विकिरो कंदड़ ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। थरपारकर जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हरदास भगत जो गादी नशीन भगत मातूराम ध्यान करे वियो, सोग में मिटी शहर बंद। मातूराम जूं आख़िरी रस्मूं अदा कयूं वेंदियूं। ऐं पिंगरियो में इंटर जे शागिर्दियाणी उरूसा खोसो खे तंग कंदड़ उबास छोकरनि ते केस दाख़िल। उरूसा खोसो जे वालिद हुसैन बख्श खोसो जी फरियाद ते पिंगरियो पुलिस जुनेद खोसो ऐं सरफराज खोसो ते केस दाख़िल कयो। पुलिस जवाबदारनि खे अञा ताईं गिरफ़्तार न कयो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: असली चीजान चारो मसालो जी सुनियाणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा। जी जान चारो मसालो, ढोरे जो हाजमो दुरुस्त। जी जान चारो मसालो, ढोरे सेहतमंद। जी जान चारो मसालो, जी जान चारो मसालो, हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03201800003।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
4: न अदा?
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी।
7: 0301-399-2836।
8: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पहले अवाम में जाओ, अवाम से इलेक्ट होके आओ, अवाम के वोटों से जीतो, फिर आके आप लोग खैराती मैंडेट में आओ,
2: उसके बाद
1: आप लोग खैराती मैंडेट में आके बैठ के आप बैठ के कौम के फैसले नहीं करोगे। जो सर ये खैराती मैंडेट में बैठे हुए लोग हैं, ये कौम के फैसले नहीं करेंगे, कौम के फैसले इलेक्टेड लोग।
2: शर्जील साहब मुझे मोशन पुट करने दे। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस, दोज़ हू आर फॉर
3: खैराती मैंडेट ते आयल वफाकी वजीर अरणी तरमीम ऐं सूबनि ते ॻाल्हाए रहिया आहिनि। खैराती मैंडेट ऐं फारम 47 ते आयल क़ौम कंदा, पहिरीं अवाम वटि वञनि, मैंडेट वठनि, पोइ ॻाल्हियूं कनि। क़ौम जा फ़ैसिला फारम 47 वारा न पर अवाम जा चूंडियल नुमाइंदा कंदा। सिंधी असेंबलीअ में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त वफ़ाकी वज़ीरनि खे ॻाल्हाइणो आहे त पार्लियामेंट में ॻाल्हाइनि त खेनि जवाब बि मिले, बाक़ी मीडिया ते ॻाल्हाइण सां कुझु बि न थींदो। वफ़ाक सिंध में 77 सालनि खां हिकु बि मोटरवे नाहे ठाहियो। सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी। बिजली बि सिंध समूरे मुल्क खे ॾेई रही आहे पर हिते लोड शेडिंग सभिनी खां वधीक आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी यूरोप जो दौरो मुख़्तसिर करे छॾियो, सुभाणे ॾे वापसीअ जा इम्कान। ज़रीन जो चवण आहे त सदर आसिफ अली ज़रदारी ॿिनि ॾींहनि लाइ फ्रांस वञणो हो, हाणे सदर फ्रांस जो दौरो मुल्तवी करे सुभाणे लंडन खां ॾे वापसि अचण जो फ़ैसिलो कयो आहे। अमेरिका सां इतिहाद अहम आहे पर अरब मुल्कनि खे पंहिंजी हिफ़ाज़त लाइ पाण भरो थियणो पवंदो। कतरी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान मजीद चयो आहे त रुगो अरब मुल्कनि खे अमेरिका ते भाण बदिरां मामलनि में पाण भरो थियणो पवंदो, सिक्योरिटी मामलनि में वधण सां ई दिफ़ा यकीनी बणाए सघिजे थी। पीटीआई अवाम जे मर्ज़ीअ बिना सूबनि जे विरहाङे जी मुखालफ़त करे छॾी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त अवाम जी मर्ज़ी बिना सिंध जो विरहाङो थियो त वफ़ा कमज़ोर थींदो। सूबनि जे क़याम बाबति तकरारी कानून साज़ी न थियणु घुर्जे, ही संजीदा मामिलो आहे, बहस थियणु घुर्जे। सलमान अकरम राजा चयो आहे त 73 जे आइन ख़िलाफ़ वञी सूबनि जे विरहाङे जी हिमायत न कंदासीं। आइन वाज़े आहे त सूबे जे विरहाङे लाइ लाॻापियल सूबे जी असेंबली ई मंज़ूरी ॾींदी। पाकिस्तान कश्मीर बाबति भारतीय बयान खे रद्द करे छॾियो, आलमी बिरादरीअ खां नोटिस जो मुतालबो। परॾेही आफ़िस मौजूदु हिकु तरफ़ खां तकरारी क़दम हलारियल कश्मीर जी हैसियत सां तब्दील नथा करे सघनि। ही मामिलो गॾियल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल जी एजेंडा जो हिसो आहे। भारत कश्मीरी अवाम खे हक़ ॾियण जा वाइदा पूरा करे। सेप्टेम्बर ऐं मई वारी जंगनि में पाक फिज़ाए जे शाहीन नाला किरदार अदा कयो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं सदर आसिफ अली ज़रदारी जो फिज़ाए जे ॾियारे ते पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त हक़ वारी जंग में साबित थियो त दुश्मन कहिड़ो बि ताक़तवर हुजे असांजे अज़म खे शिकस्त नथो ॾेई सघे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पाक फिज़ाए जे शाहीननि पंहिंजे पेशावरानी सलाहियत महारत पाण विञाई आहे। सेप्टेम्बर ऐं मई वारी जंग में दुश्मन खे शिकस्त ॾिनी। लाहौर पुलिस पीटीआई जी गिरफ़्तारी, हमाद अज़हर जी गिरफ़्तारी ज़ाहिर करे छॾी। लाहौर पुलिस मूजिबि हमाद अज़हर अरिड़हं केसनि में घुर्बल आहे। एंट्रेंस रूपो शो जांच पुलिस हमाद अज़हर खे गिरफ़्तार कयो आहे। हाणे हमाद अज़हर खे रिमांड लाइ अदालत में पेश कयो वेंदो। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में घोटकी जे फहमीदा पिताफ़ी केस जी ॿुधणी। फहमीदा खे बाज़ियाब न कराइण ते अदालत पारां DIG सखर मथां कावड़ जो इज़हार। अदालत IG सिंध खे ईंदड़ हफ़्ते तलब करे वरितो। अदालत चयो आहे तव्हां औरत खे बाज़ियाब न करायो, तव्हां छो आया आहियो? IG सिंध खे पेश थियणो हो। मीर रज़ा केस बाबति अदालती कमीशन आॾो मीर रज़ा जा वारिस ऐं दोस्त पेश। कमीशन मीर रज़ा जे दोस्त खां सवाल कयो, तव्हांखे कीअं ख़बर पई त मीर रज़ा गुम थी वियो आहे? दोस्त जवाब ॾिनो त मीर रज़ा जी मंगेंदी ॿुधायो आहे त आख़िरी भेरो मीर रज़ा सां मुलाक़ात 28 जुलाई ते थी हुई। ककड़ भरिसां कलोई बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में थियल झेड़े दौरान मारिजी वियल नौजवान जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। नौजवान जाफ़र कलोई जे वारसनि लाश रखी धरणो आयो। नौजवान खे क़तल कंदड़ जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। एहतियात जारी रखण जो चिताव। सकरनि वेझो ॻोठु रहमो किरियो में HIV जा वधीक 13 नवां केस ज़ाहिर। ॻोठु में HIV मरीज़नि जो अंगु वधी 33 थी वियो। ॻोठनि समेत मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अॻवाण जो मुतासिर मरीज़नि जो इलाज न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज। मुतासिर मरीज़नि खे इलाज जूं सहूलियतूं ऐं दवाऊं ॾियण जो मुतालबो। लाड़काणे जे एयरपोर्ट थाणे जी हद मां ॿ वापारी अॻवा परड़े जी वासी नवाब अली सूमरो ऐं संदसि दोस्त PP अॻवान दीदार अली बहन गाॾी समेत अॻवा कयो वियो। अॻवा जे इतलाबाद पुलिस जांच शुरू करे छॾी। ॿुधायो पियो वञे त मुगविन जी गाॾी बलूचिस्तान वारे एरिया मां हथाई आहे, जॾहिं त ॿिन्ही मुगविन जा गर्भाती सख़्त परेशान आहिनि। दड़ो भरिसां भाउ हथां भेण क़तल। ॻोठु मौलवी अहमद भरिसां जवाबदार ख़लील मंगसी फायरिंग करे भेण दुआ खे क़तल कयो, जवाबदार फरार, कारण मालूम न थियो। शहदाई कोर्ट में क्रिकेट रांदि खेॾण दौरान ॿारनि जी ॻाल्हि तां जहिड़ो लठियूं ऐं सरोटा लॻण सबबु 8 ॼणा ज़ख़्मी। लगारी भटी चांडिया ऐं बिरोई बिरादरी जे माण्हुनि में जहिड़ो थियो लगारी बिरादरी जे माण्हुनि केस न थियण ख़िलाफ़ मस्तोई मोहला में रोड ते धरणो आयो। केस दाखिल करे जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो। फेजगंज ऐं भरपासे में मंशियात जी आज़ार खिलाफ़ शहरनि जो पका चांग में एहतजाज, इलाइक़े में मंशियात जा मौजूदु अॾा बंद करण जो मुतालबो। मुज़ाहिरनि चयो त मंशियात पुलिस जी सरपरस्ती में हली रही आहे। शहरनि सां गॾु गोठनि में बि मंशियात जा अॾा क़ाइम कया विया आहिनि। मंशियात विकिरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। थरपारकर जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हरदास भक्त जो गादी नशीन भक्त माथूराम ध्यानु करे वियो। सोग में मिठी शहर बंद, माथूराम जूं आख़िरी रस्मूं अॼु अदा कयूं वेंदियूं। इंटर जी शागिर्दाणी रूसा खोसो खे तंग कंदड़ बास छोकरनि ते केस दाख़िल। रूसा खोसो जे वारिद हुसैन बख्श खोसो जी फरियाद ते पुंजो पुलिस जुनैद खोसो ऐं सरफराज खोसो ते केस दाख़िल कयो। पुलिस जवाबदारनि खे अञा ताईं गिरफ़्तार न कयो। हिंगोर जा भरिसां क़ौमी शाहरा ते ऑयल टैंकर जो कार खे टकर, वॼणा फोत। हादसे में जावेद अली शाह समेत वॼणा फोत थिया। लाश अस्पताल मुंतकिल। बिरया रोड में कराची खां लाहौर वेंदड़ तेज़गाम एक्सप्रेस जे टकर में नौजवान फोत। फोती नौजवान जी सुञाण बिरया रोड वासी अब्बास पुट कदीर मलिक जे नाले सां कई वई।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: सोनी अॼु त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
1: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
0: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
1: चाचे, जुम्मन जी खु़शहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
0: वाह सोनी वाह, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइनि, ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94।

0: ज़िंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मैंडेट में बैठे हुए लोग हैं, ये कौम के फैसले नहीं करें, कौम के फैसले इलेक्टेड लोग।
2: शहीन साहब मुझे मोशन पुट करने दे, नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस दोज हु आर फॉर।
3: खैराती मैंडेट ते आयल वफाकी वजीर अरिड़हीं तरमीम में सूबन ते ॻाल्हाए रहा आहिनि। खैराती मैंडेट ऐं फॉर्म 47 ते आयल क़ौम जा फ़ैसिला न कंदा, पहिरीं ही अवाम वटि वञनि, मैंडेट वठनि, पोइ ॻाल्हियूं कनि। क़ौम जा फ़ैसिला फॉर्म 47 वारा न पर अवाम जा चूंडियल नुमाइंदा कंदा। सिंध असेंबलीअ में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शर्जीलना मेमन चयो आहे त वफ़ाकी वज़ीरनि खे ॻाल्हाइणो आहे त पार्लियामेंट में ॻाल्हाइनि, न त खेनि जवाब बि मिली वेंदो, बाक़ी मीडिया ते ॻाल्हाइण सां कुझु न थींदो। वफ़ाक सिंध में 77 सालनि खां हिकु बि मोटरवे नाहे ठाहियो। सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी। बिजली बि सिंध समूरी मुल्क खे ॾेई रही आहे पर हिते लोडशेडिंग सभिनी खां वधीक आहे।

सदर आसिफ जरदारी यूरोप जो दौरो मुख्तसर कर सुे देह वापसी का इम्कान जरिए जो चवण है सदर आसिफ जरदारी बिन ढीन फ्रांस वो हो हाँ सदर फ्रांस जो दौरो मुलतवी कर सुे लंडन का देह वापस अचान जो फैसलो किया है। असाजे असासन के निशानो बनाया वो तो खिते में मौजूद अमरीकी असासा भी महफूज न रहंदा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ अमरीका के खबरदार कंदे है तेहरान पंजी जवाबी सलाहियत साबित कर चुको है। ईरानी असासन ते हमलन जो जवाब अमरीकी तेल ए गैस कंपनियों ते हमला कर दिनों वो। अमरीका से इतिहाद अहम है पर अरब मुल्कन के पंजी हिफाजत लाए पान भरो थेड़ो पौंदो। कतरी परदेह वजार के तर्जुमान मजीद अल अंसारी है तो रुगो अरब मुल्कन के अमरीका से भारण बदरा स्ट्रेटिक मामलन में पान भरो थेड़ो पौंदो। सिक्योरिटी मामलन में वधण से ही दिफा यकीनी बनाए सकजे थी। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात गडियल सहकार से इतफाक। मुराद अली शाह तो सियासी इस्तेहकाम ए जमहूरी अमल जो तसलसल मुल्क की तरक्की लाए जरूरी है। फैसल करीम कुंडी तो सिंध ए खैबर पख्तूनख्वा समेत समूरा सूबा पाकिस्तान की तरक्की में बराबर जहा शरीक है। पीटीआई अवाम की मर्जी बिना सूबन के विरहांगे की मुखालफत कर छी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अवाम की मर्जी बिना सिंध जो विरहांगो थो तो वफाक कमजोर थो सूबन की क्याम बाबत तकरारी कानून साजी न थियन घुर्जे ये संजीदा मामलो है बहस थियन घुर्जे। सलमान अक्रम राजा तो 73 की आइन खिलाफ वही सूबन की विरहांगे की हिमायत न कंदी आइन वाजे है तो सूबे की विरहांगे लाए लागापियल सूबे की असेंबली ई मंजूरी दींदी। मुल्क में आइन की बालादस्ती कानून की हुक्मरानी ए अदलिया की आजादी बाबत कराची में सिंध हाईकोर्ट बार जो सेमिनार सिंध के इम्कानी विरहांगे की सख्त मुखालफत। मुल्क में आइन ए कानून की बालादस्ती कायम करने जो भी मुतालबो वकील अगवाणन तो मुल्क आइन का सवाए नथो हली सके कानून की हुक्मरानी का सवाए अवाम की भलाई मुमकिन ना है। सिंध जो विरहांगो कबूल ना है हर महाज से मजाहमत थी सिंध एक सद जो इंतजार कर रही है। सिंध विरहण बदरा मकानी इदार के मजबूत कर वे पंजाब में 1 करोड़ का वधीक बार स्कूलन का बाहर आन कें नजर नथा अचन सभी के रुगो सिंध अंदर बुराई नजर अचन थियो। सिंध के तालीम बारे वजीर सैयद सरदार शाह तो सिंध में बोर्ड सबब केतरा स्कूल तबाह थिया को बुधाए तो सिंध की कें मदद कई सपोर्ट नथा कयो तो घट में घट जख्मन ते लूण त नहारियो। सूबाई वजीर जाम खान शोरो चयो तो नवन सूबन बाबत रिथ आणन जो एमक्यूएम जमात इस्लामी ए पीटीआई के पधरो करण हो जेके सब सिंध वासिन आदो जाहिर थिया आहिन। लाहौर पुलिस पीटीआई के गिरफ्तार अगवान हमाद अजहर की गिरफ्तारी जाहिर कर छी। लाहौर की दहशतगर्दी टोड़ अदालत में पेश रिमांड ते पुलिस हवाले लाहौर पुलिस मूजिब हमाद अजहर 8 केसन में घुर्बल हो ए 3 साल का रुपोश हो। जांच पुलिस हमाद अजहर के गिरफ्तार कयो आहे। सिंध हाईकोर्ट सखर बेच में घोटकी की फामिंदा पिताफी केस की बुधनी फामिंदा के बाजियाब न कराने ते अदालत पारा डीआईजी सखर ए एसएसपी घोटकी मथा कावड़ जो इजहार। अदालत आईजी सिंध के इंदड़ हफ्ते तलब करे वरतो। डीआईजी सखर इस्तदा कई तो नारी की बाजियाबी लाए कुछ वक्त दिनों वे जस्टिस तस्नीम सुल्ताना चयो तवा डीआईजी थी करे हर भेरे मोहलत वठी रहा आयो अदालत के गुमराह कयो था असा हुकुम दिनो हो तो नारी के पेश कयो न तो आईजी सिंध पेश थे अवा छो पेश थे आयो इंदड़ बुधनी ते आईजी नारी के बाजियाब कराए पेश न कयो तो वारंट जारी कया वेंदा। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की नतीजन ए मुबैना मेरिट की लताड़ खिलाफ जाम शुरू में सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जो मार्च मेरिट की बहाली जो मुतालबो अगवाणन चयो तो नौजवान की मुस्तकबिल से लागापियल मामलन में शफाफियत ए मेरिट के यकीनी बनाने हुकूमत की जिम्मेवारी है। मेरिट के यकीनी बनाया वे शागिर्दन से इंसाफ कर वे। मलीर के इलाके लांडिया में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लुंडे के गोदाम के बाह लगी वही
फायर ब्रिगेड जो 16 गाड़ियों ए रेस्क्यू अमलो बाह विसायण में रुधल दूहे में साबू साजन कर बिन मर्दन एक औरत की हालत खराब थी वही अस्पताल मुंतकिल वे वजीर वाके जो नोटिस वरतो लागापल इदार के फौरी तौर कदम खड़ जो हिदायत जारी सकरण भरसा गोठ रहमू कीरियो में एचआईवी जा वधिक 13 नवा केस जाहिर गोठ में एचआईवी मरीजन जो अंग वधी गोठाणन एसयूपी समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी अगवानन जो मुतासिर मरीजन जो इलाज न थियण खिलाफ एहतजाज मुतासिर मरीजन के इलाज जो सहूलतूं ए दवाऊं देण जो मुतालबो

0: लाड़काणे जे एयरपोर्ट थाने जे हद मां ब वापारी अगवा बलड़े जी वासी नवाब अली सुमरो ऐं संदसि दोस्त पीपी अगवान दीदार बहन गाॾी समेत अगवा थी विया। अगवा जे इतलाबाद पुलिस जांच शुरू करे छॾी। ॿुधायो पियो वञे त मुगविन जी गाॾी बलोचिस्तान वारे एरिया मां हथाई आहे, जॾहिं त ॿिन्ही मुगविन जा घर भाती सख़्त परेशान आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन, उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
3: जी जा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखर वारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रिया और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 03005109। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहाँ मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डन टीएल एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
5: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।

0: साईं कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

जी जनाब वेलकम भलीकार खुश आमदीद ही आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जो जी एफ एम मातली जी एफ एम मीरपुर खास जी एफ एम सकरंट जी एफ एम मटियारी जी एफ एम मेहरापुर जी एफ एम मोरो जी एफ एम लाड़कानू ए जी एफ एम सखर जो गडियल आवाज अवां जो शो आहे सिंधड़ी जी शाम जका आहे अवां जे नाम ए अवां जे मेज़बान अवां जे पंहिंजो उही साॻियो अवां जो यूनिस बकारी लाखीणे लतीफ़ फरमायो त चेतारे चवंदियासि ॻाल्हियूं के सजणे जे मोह मुक़ाबिल थियासि त वयूं सभु विसरी अवां खे जीअ में जायूं ॾींदे चवंदासीं भलीकार जेकॾहिं अवां रेडियो सेट या इंटरनेट ते इंजॉय कयो पिया पंहिंजे शो खे अवां किथे किथे ॿुधो पिया उहो असांखे अहसासु तॾहिं थींदो जॾहिं तव्हां असांखे मैसेज मोकिलींदो तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान आहे तव्हां पहिरीं लिखो MTI उन खां पोइ स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 888 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो छो त अव्हांजा मैसेज जीअं ई पहुचंदा जीअ में जायूं ॾेई शामिल कंदासीं सो मौज़े सामाईन अवां रेडियो सेट ते था ॿुधो या इंटरनेट ते अवां कार में ॿुधो पिया या बाज़ार में

पंहिंजे ख़ुशियुनि खे त ख़तम कंदो आहे, पर हासिद जेको हूंदो परायनि ख़ुशियुनि ते हुई बि जलंदो रहंदो आहे, उनखे सुकून नाहे हूंदो। अल्लाह ताला जे तरफ़ा ॾिनल इंसान खे केॾी बि ख़ुशी हुजे पर हासिद खे ख़ुशी नसीब नाहे थींदी, छो त हू ॿिए ते हसद करे थो। हुन खे भले 10 ख़ुशियूं मिलियल हुजनि पर उन खां कंहिं माण्हूअ जी हिकड़ी ख़ुशी बर्दाश्त नाहे थींदी। इन करे तव्हां ॾिठो हूंदो त हासिद सॼो ॾींहुं हसद में सड़ंदो पचंदो रहंदो। उन करे हसद न करियो, मोहबत करियो ऐं दुआ ॾियो। जेकॾहिं कंहिंखे ख़ुशि था ॾिसो त उन जे लाइ दुआ कयो, अञा बि बाग बहार हुजे उन जे सदिके अलाह पाक तव्हां खे बि ख़ुशि रखंदो। ॻाल्हियूं असां खोड़ कबियूं ऐं टेलीफोनिक ॻाल्हियूं तव्हां सां थींदियूं, उहे त थींदियूं ॿिए कलाक में। पहिरें कलाक में अॼु असीं चाहियूं था त तव्हां असांखे कुझु मैसेज मोकिलियो, त पोइ ॾिसूं था केरु हूंदो असांखे ॿुधे थो। उन जे लाइ असां मैसेज पेज ते हलंदासीं। तव्हां टाइप करियो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888 यानी 8881 ते असांखे मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। ॾिसंदासीं त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो शामिल, त पोइ अवांजा मैसेज शामिल करण जे लाइ यकीन प्यार ऐं पंहिंजा रंगनि में हलूं था, ॾिसूं था त असांखे मैसेज कंहिं कंहिं मोकिलिया आहिनि। जी जनाब,

बुढ़े इस्माइल खान का असा बुधे पियो अलण खान अला बचायो। अच्छा जी अला बचायो असा बुधे तो रोतकानी साहब अला बचाया केड़ा हाल खुश आयो ठीक आयो चंगा भला गोठ शहीद मोहम्मद फाजिल राहू खां जुमन खासकेली साहब बुधे पे जुमन भा मेहरबानी भलीकार तमां लिखियो है डियर ब्रादर यूनिस सलाम वालेकुम सलाम थैंक यू भलीकार वेलकम मई वडा वड़ मिठा मानो। ओके जनाब साज़ ऐं आवाज़ जी साथ में अवां शामिल थियण जे लाइ हाणे ई मैसेज करे छॾियो ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु हूंदो शामिल थियण जे लाइ मैसेज ते। सो तव्हां बिना देर जे मोकिलियो मैसेज अॼु असीं ॾिसंदासीं असां सां गॾु केरु थो शामिल थिए। ओके जनाब त पए झलूरी खां ख़ालिक लाशारी ज्वाइन कयो आहे तमामु घणी मोहबतूं मिठा माण्हू अव्हां खे भलीकार चवंदासीं। जाम खान लगारी खां अली रज़ा लगारी ॿुधे पियो आकिब ॿुधे पियो अव्हां सां गॾु अव्हां जी तमामु घणी महिरबानी अव्हां खे बि चवंदासीं भलीकार थैंक यू। ऐं अज़हर लगारी अव्हां सां गॾिजी ॿुधे थो मोहबतूं वॾा वड़ ऐं पाबो वीरो थर खां असांखे दिलीप कुमार मेघवाड़ ॿुधे थो नोवल राय ऐं अव्हां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं दानिश कुमार तव्हां सां गॾु ॿुधे थो सूरज गुल थैंक यू भलीकार। शंकर लाल बसंग ॿुधे थो अव्हां शो चयो आहे सुठो आहे मां थोराए थो आहियां तव्हांजो तव्हांखे शो सुठो लॻे थो बसि ॿियो छा घुर्जे। हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली झंडे मरी खां कुर्बान अली ख़ासकेली यादि कयो आहे तमामु घणियूं मोहबतूं तव्हां मुंहिंजे लाइ दुआऊं मोहबतूं प्यार ऐं पंहिंजा रंग मोकिलिया मैसेज में तमामु घणियूं मोहबतूं ऐं प्यार तव्हांजो क़बूल पियो मिठा माण्हू थैंक यू। ऐं सरफराज़ जरवार असांखे यादि कयो आहे तमामु घणियूं महिरबानी खिपरो खां तमामु घणियूं महिरबानी जी असांखे सुमार भील ॿुधे पियो दिलीप कुमार मेघवाड़ ॿुधे थो ऐं अब्दुल हकीम बजीर ॿुधे थो अव्हां लिखियो शाल सलामत जो आमीन सुम आमीन ऐं अवीं बि जो बाग बहार शाल ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो शाल अव्हां जी मुर्क मेरी न थी। साईं मुंहिंजे जुगनि खां जीअरी महिराण माथरीअ जे मलुक मिटीअ ते जिते जिते तव्हां रहो पिया तव्हांजी ख़ुशीअ जा ख़्वाहिशमंद आहियूं असां ऐं GFM 88 रेडियो नेटवर्क जी तमामु टीम तव्हांजे लाइ दुआगू आहे। अव्हां यकीननि जिते जिते हूंदो ख़ुशि हूंदो त असां बि ख़ुशि हूंदासीं अव्हां जी ख़ुशी में ई असांजी ख़ुशी आहे। साईं मुंहिंजे को वक़्तु कहिड़ो को वक़्तु कहिड़ो पर जंहिं वक़्त में पंहिंजा वक़्त ते न पहुचनि ऐं पंहिंजा परावा महसूस थियनि ऐं सजण सार न लहनि त पोइ तकलीफ़ थींदी आहे ऐं अहिड़ी उदासी अहिड़ी तकलीफ़ जलाल चांडीअ जे हिन ट्रैक में मौजूदु आहे जंहिंमें जंहिंजे लाइ इंतज़ारु हुजे जंहिंजे लाइ बेक़रार हुजे माण्हू ऐं उहो देरि करे अचे त पोइ हीअ मयार उन्हनि जे लाइ हूंदी।

जी जनाब, साथ में आवाज़ साथ में उनखे अगे जो असो कमर्शियल ब्रेक वठूं का गॉल कयूं। असि चाहियूं था जबरदस्त ट्रैक प्ले करे पो कमर्शियल ब्रेक ना हलूं। तव्हां तेसि ताईं मैसेज मोकिले सघो था। सनूबर मैसेज मोकिलियो आहे, तव्हां लिखियो छवन मीराली जो ट्रैक आहे असांखे ॿुधायो। उन जा ॿोल जेके तव्हां लिखी मोकिलिया आहिनि उहो सम्झ में कोन पिया अचनि। प्लीज़ हिकु दफ़ो ॿीहर रिपीट मैसेज कजो। ऐं जेके जेके भेनरूं ॿाहिरि असांखे ॿुधनि था, प्लीज़ जॾहिं तव्हां का सॉन्ग प्ले करण जी रिक्वेस्ट मोकिलियो था त उहा रिक्वेस्ट मोकिलियो इन तरीक़े सां जो सॉन्ग जा पहिरियां ॿोल हुन में लिखजी अचनि। बहरहाल वठूं था ट्रैक। ऐं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ वापसि अची नंढड़ो कमर्शियल ब्रेक हूंदो। बिना ब्रेक यूनिट बकारी वापसि ईंदो। अञा बि ॾेढ कलाक वञ साथ निभाई।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

ऐं पवन कुमार तव्हां सभिनी जूं मोहबतूं ई भलीकार। इस्माइल खान नोतकाणी खां अलाए बचे नोतकाणी भाउ अव्हां जा ॿ मैसेज गॾु गॾु पहुता मोहबतूं। थैंक यू वेरी मच ऐं मोज़ेस ख़वातीन हज़रात साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में अव्हां सां अॼु ॻाल्हियूं जारी आहिनि ऐं अव्हां जेकॾहिं चाहियो था शामिल थियण त मैसेज मोकिले सघो था। लिखंदो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो ऐं 888-188-81 ते असांखे हाणे हाणे मैसेज मोकिलियो त ख़बर पवंदी त असांखे केरु किथां खां यादि करे पियो। सजण सांगीअ जी वांढ मां असांखे गुलाब गुल ॿुधे थो। गुलाब गुल तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी भलीकार। लुटको मोरी सांगड़ खां ॿुधे थो मोहम्मद साले लगारी, लालबख्श बिलावल लगारी, अव्हां जूं तमामु घणी महिरबानी उसामा लगारी वादा गजी ॿुधे पियो। किरोड़े कृप तव्हांजा खुश हुजो आबाद हुजो। थैंक यू ऐं असांखे यादि कयो आहे जी जनाब ॻोठ आलम खान जरवार खां मोहम्मद अज़ीज़ जरवार साहब अवां लिखियो त तबियत सही आहे मिठा माण्हू बिल्कुलु तव्हांजे दुआउनि सां तबियत बिल्कुलु ठीक ठाक तव्हां खुश आहियो ठीक आहियो। गुलाम हुसैन जलालाणी ॻोठ खां जी जनाब नाज़ फ़कीर मोहम्मद जलालाणी असांखे ॿुधे पियो ऐं तमामु घणी महिरबानी भलीकार। महबूब नाज़ जलालाणी ॿुधे थो ऐं थैंक यू। मुख़्तियार नाज़ जलालाणी ॿुधे थो ऐं आरज़ू असलम जलालाणी किरोड़े कुर्ब अवल कयो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मिठा माण्हू। मोहबतूं तव्हांजूं शाद हुजो आबाद हुजो ऐं बिल्कुलु ठीक ठाक हुजो सदाई सुखिया हुजो। ओके जनाब त पोइ साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में अव्हां असांखे यादि कयो पिया त हाणे हाणे लिखो जिन जिन महिरबाननि खे तरीक़ेकार ॿुधाइणो आहे जल्दी सां नोट करे वठो। लिखो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88-81-888 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। 88-81 साईं नंबर हूंदो जंहिं नंबर ते पर शुरूअ में MTI लिखणु बिल्कुलु न विसारिजो छो त MTI लिखंदो तॾहिं मैसेज असांजे स्टूडियो जी स्क्रीन ते पहुचंदो। नोटो खां थरपारकर खां असांखे ज्वाइन कयो आहे रामचंद कुमार कोहली ऐं अवां सां गोविंद गुल ॿुधे पियो। तमामु घणी महिरबानी थैंक यू अव्हांखे चवंदासीं भलीकार रामचंद। ऐं जनाब असांखे डीपलो जे ॻोठ झपियो खां ॿुधे थो मोहम्मद सिद्दीक पाढ़ो रोशन अली पाढ़ो अवां लिखियो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मिठा माण्हू। किरोड़े कृप तव्हांजा जो तव्हां असांखे ॿुधो पिया ऐं सदाई सुखिया हुजो महिरबानी अव्हांजूं भलीकार भलीकार चवंदासीं तव्हांखे। जी जनाब साज़ ऐं आवाज़ में हिकिड़ो नंढो ब्रेक आहे ऐं वठूं था ब्रेक पहिरीं शॉर्ट ब्रेक वठी वठूं वरी अची वञे मैसेज शामिल कंदासीं त पोइ सुरैया सुमरो जो आवाज़ आहे गिज ॿुधी था वठूं त छा थी चवे सुरैया। हिन ट्रैक खे इंजॉय कजो जिते जिते ॿुधो था तव्हां ॿुधो पिया लाड़काणू सखर मीरपुर ख़ास मोरो मेहरापुर सकरंड मटियारी या मातली में जिते जिते तव्हां असांखे ॿुधो पिया बदीन खां बखर सीराणी खां सखर कींजर खां कारूंजर ऐं केटी बंदर खां कश्मोर ताईं गूंजंदड़ हिकु आवाज़ GFM 88

जी जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है सफोर नंडडो नंडडो ब्रेक हुंदो बस माई जो वापस तो अचा छो तो प्रोग्राम है जारी हो सारी नंडडे ब्रेक का वापस अचे तो यूनिस बकारी केदा न वंजो बस इज

0: FM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: ये अपना वाइब सेट है
0: जी। ये
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

जी मजे सामीन साज ऐं आवाज़ जे साथ में यूनुस बकारी साथ ऐं ॾाढो सुहिणो साथ आहे असांजे हिननि पंद्रहनि मिंटनि जे मैसेज वारे साथ खां पोइ हूंदो असांजो साथ कहिड़ो कॉल्स वारो हूंदो साथ साईं मुंहिंजा ॾिसंदासीं त कॉल्स में असां अव्हांखे शामिल कंदासीं पर फ़िलहाल त कॉल न कजो ईअं न थिए जो तव्हां हाणे ई कॉल करण शुरू कयो ऐं हाणे ई कॉल बिल्कुलु कोन हूंदी हलो कॉल जो टाइम जेको हूंदो उहो न्यूज़ खां पोइ हूंदो इन जे करे तेसिताईं असां मैसेजेस शामिल कयूं पिया असां कोशिशि कयूं पिया त तव्हां असांजी बि ॻाल्हि ॿुधो ऐं पंहिंजी ॻाल्हि बि असांखे ॿुधाए वठो छो त जेका लिखत वारी ॻाल्हि हूंदी उन जे ॿुधाइण जो अंदाज़ पंहिंजो ख़ूबसूरत अंदाज़ हूंदो आहे सो ॾिसी था वठो त असांखे केरु थो यादि करे इरफान अली थेबो साहब असांखे ॿुधी रहियो आहे साले पुट खां उनजो तमामु घणी महिरबानी साले पुट खां अवां असांखे खबड़ी भिट खां ॿुधो था मोहबतूं मिठा माण्हू ख़ुशि जो आबाद हुजो ऐं नोटो खां असांखे ॿुधे पियो जी नंढड़ी रवीना ॿुधे पई ऐं कमलेश ॿुधे पियो ऐं रजीना कुमारी ॿुधे पई अवांजो तमामु घणी महिरबानी ऐं रामचंद कुमार बि ॿुधे पियो भलीकार चवंदासीं सभिनी खे थैंक यू मटियारी खां सनोबर जो मैसेज पहुतो अवांजो महिरबानी भलीकार अवां लिखियो त शमन जो ट्रैक ज़रूर ॿुधाइजो बिल्कुलु असांजी क्यू शीट में शामिल आहे शमन अवां ॿुधजो त तव्हांखे उहो गानो कीअं थो लॻे साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में अवांजा मैसेज अवांजो साथ आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क तां अवां असांखे लाइव ॿुधो पिया जेके महिरबानी रेडियो सेट इंटरनेट ऐं फेसबुक ते ॿुधनि पिया सभिनी जूं मोहबतूं जेकॾहिं अवां असांखे ज्वाइन करे चुका आहियो ऐं हा जेके महिरबानी परॾेह में असांजे लाइव शोज खे ॿुधण चाहिनि था उन लाइ असांजी लाइव स्ट्रीमिंग आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क खे तव्हां गूगल ते सर्च कंदव असांजी सॼी एप्लीकेशन तव्हांजे साम्हूं हूंदी जेके बि अठनि स्टेशननि मां तव्हांखे जेका स्टेशन वणे थी उनखे तव्हां लाइव ॿुधी सघो था ऐं जेके असांजा शो जेके नेटवर्क जा हूंदा उहे त तव्हां जंहिं स्टेशन खे क्लिक कंदो तव्हां सां गॾु हूंदासीं सची पची त पोइ जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क खे गूगल ते बि सर्च करियो दुनिया जे कुंड कुर्छ में अवां सां गॾु जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जेको सिंध जो आवाज़ आहे सिंध जूं सदाऊं खणी अवां ताईं पहुचनि ज़िंदगी मुंहिंजी ठहे जे तूं अची लोक वाधायूं ॾे जे तूं अची ज़िंदगी मुंहिंजी ठहे जे तूं अची लोक वाधायूं ॾे जे तूं अची दिलि भरे करियां मां दीदार तुंहिंजो प्यास नेणनि जी लहे जे तूं अची सो जनाब साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त सुठियूं ॻाल्हियूं सुठा गाना सुठा ट्रैक ॿुधण सां माण्हुनि खे सुकून मिलंदो आहे ही ट्रैक गॾिजी ॿुधूं था अव्हांखे कीअं थो लॻे ॿुधाइजो मैसेज में जल्दी जल्दी मैसेज कजो छो त हिन खां पोइ जेको कलाकु शुरू थींदो न्यूज़ खां पोइ उहो हूंदो कॉल्स वारो ऐं हा कॉल्स जे लाइ असीं तव्हांखे नंबर ॿुधाईंदा उन ते कॉल कजो जेको नंबर न ॿुधायूं उन ते न त पोइ ट्रैक आहे ब्रेक आहे बिना ब्रेक यूनुस बकारी वापसि ईंदो छो त प्रोग्राम आहे जारी ओ सारी हिकिड़े ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो अवांजो पंहिंजो यूनुस बकारी

जनाब कीअं बि लॻे अव्हांखे अॼु शो ज़रूरु पंहिंजी राय खां आगाह कजो अवांजा मैसेजिस अवांजी मोहबत अवांजो प्यार अवांजी पंहिंजाइप आहे शामिल अॼु शो में त पोइ ही आवाज़ ॿुधो हिन आवाज़ में हिन ट्रैक में अव्हांखे छा पियो महसूस थिए दर्द हज़ार ॾिनई मूंखे त बीमार कयई फौजे सुमरो जो ही आवाज़ जेको दर्द ॾे ऐं वरी पुछे हाल अहिवाल त हाणे कहिड़ो हाल अथई त पोइ छा थींदो केॾा न यादगार ऐं शानदार गीत फौजिया सुमरो ॻाया हुया ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त फौजिया सुमरो सेप्टेम्बर महीने जी 4 तारीख़ ते हिन खां असां खां तकरीबन 20-22 साल अॻे जॾहिं विछड़ी वई हुई पर हुन जा गीत सदाई सिंध में गूंजंदा रहंदा सो फौजे सुमर जो ट्रैक ॿुधी वठो यूनिस बकारी बिना ब्रेक वापसि ईंदो असां ॻाल्हियूं कंदो रहंदो छो त थोरो टाइम बचो आहे न्यूज़ में।

जी जनाब, न्यूज ब्रेक जो टाइम थी वो तेहे तोड़े परडेह जो खबरों बुधाइण लाइन सेंट्रल स्टूडियोज की पेशकश वी हलूँ जिता केटीएन न्यूज बुधाइंदी वापस इंदी हा पूर कलाक टेलीफोनिक गुफ्तगु थी पर अवे नंबर बुधाइंदी ब्रेक का कैदा वनजो छो तो प्रोग्राम है जारी सारी नंढड़े ब्रेक का वापस इंदो अवो यूनिस बकारी शो है सिंध डी।

0: नवन सूबन या इंतजामी यूनिट्स जो क्याम कौमी मसलो है इन मामले ते किथा भी मजामत न थन घुर्ज यह फैसलो वफाक समेत सूबन के मजबूत कद बचावारे वजीर ख्वाजा आसिफ कबीर बीहर नवन सूबन की हिमायत कदे है जैसे कंखे सूबे जो लफ्ज पसंद ना है इंतजामी यूनिट छो वे सूबे के मामले से सियासी बयान वधाए पेश कया पा वन इस्लामाबाद के सूबो ठा पे वे तो सुठो थो अफगान बे कमजोर हालत बावजूद पैं मुल्क में 35 सूबा ठा छा
1: वो वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है अनफॉर्चुनेटली वो वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं जो गांधी की पैदावार है वो बैठ के तनकीदें कर रहे हैं वो बैठ के बात कर रहे हैं वो 18वीं तरमीम पे बात कर रहे हैं आप लोग पहले अवाम में जाओ अवाम से इलेक्ट होके आओ अवाम के वोटों से जीतो फिर आके आप इन तरमीमों पे बात करो आप लोग खैराती मैंडेट में आके बैठ के आप लोग खैराती मैंडेट में आके बैठ के आप बैठ के कौम के फैसले नहीं करोगे जो सर ये खैराती मैंडेट में बैठे हुए लोग हैं ये कौम के फैसले नहीं करेंगे कौम के फैसले इलेक्टेड लोग
2: शाहजी साहब मुझे मोशन पुट करने दे नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस दोज हु आर फॉर
0: खैराती मैंडेट से आयल वफाकी वजीर अड़ी तरमीम ए सूबन से गाले रहा खैराती मैंडेट ए फॉर्म 47 से आयल कौम जा फैसला न कंदा पहरी ही अवाम वट वन मैंडेट वठन पोए गालियों कन कौम जा फैसला फॉर्म 47 वाला न पर फैसला फॉर्म 47 वाला न पर अवाम जा चूंडियल नुमाइंदा कंदा सिंध असेंबली में गालाइंदे सीनियर वजीर शर्जील मेमन चयो तो वफाकी वजीरन के गालाइणो आहे तो पार्लियामेंट में गालाइन तक इन जवाब भी मिली सके बाकी मीडिया ते गालाइण सा कुछ न थींदो वफाक सिंध में 77 सालन का एक भी मोटरवे नाहे ठायो सिंध सभिनी का वधीक गैस पैदा कंदड़ सूबो आहे पर घट गैस मिले थी बिजली भी सिंध समूरे मुल्क के ॾेई रही आहे पर हिते लोड शेडिंग सभिनी का वधीक आहे पीटीआई अवाम की मर्जी बिना सूबन की विरहांगे की मुखालफत कर छी पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर है अवाम की मर्जी बिना सिंध जो विरहांगो थो तो वफा कमजोर थो सूबन की क्याम बाबत तकरारी कानून साजी न थियन घुर्ज ये संजीदा मामलो है बहस थियन घुर्ज सलमान अकरम राजा तो 73 की आइन खिलाफ वही सूबन की विरहांगे की हिमायत न कदासी आइन में वाजे है तो सूबे के विरहांगे लाए लागापल सूबे की असेंबली ही मंजूर दींदी मुल्क में आइन की बालादस्ती कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आजादी बाबत कराची में सिंध हाई कोर्ट बार जो सेमिनार सिंध के इम्कान विरहांगे की सख्त मुखालफत मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करण जो भी मुतालबो वकील अगवान चयो तो मुल्क आइन का सवाए नथो हली सके कानून की हुक्मरानी का सवाए अवाम की भलाई मुमकिन ना है सिंध जो विरहांगो कहीं भी सूरत में कबूल ना है हर महाज से मज़ामत कंदासीं सिंध एक सद जो इंतजार कर रही है सिंध विरहण बदरा मकानी इदारन के मजबूत किए वे

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: मालवन भारन लाए खुशखबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए, अम्हां के खुशहाल बनाए, हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03200180003।

0: আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আমার সাথে কেরবি বুদে তোমাদের প্রোগ্রাম
1: তমাম বেহতরিন তোমাদের প্রোগ্রাম লাগলো আছে। वरी तवा जी आवाज है तो असन के पसंद है प्यारो मिठो आवाज लगलो आ जो सब ने मोबाइल पे में रिकॉर्ड करे
0: रखा है। हां सदको मा वन्या तमा ता जो मुकीर रहे जो को मुजो आवाज रिकॉर्ड करे वरी बुधे दो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सब जो ना और अकेला ही चला है वे तवा प्रोग्राम में आवाज बोलते ना वरी तरीके
0: से। हां सही है सही है। खबर तो माना तहा जो मोहब्बत जो के ने वही त असन के जियारिन थियो।
1: बिल्कुल बिल्कुल साईं वो आ तवा के
0: तदे तो शायर चयो न जाने कौन मुझे दुआओं में याद रखता है, मैं जब भी डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। मेहरबानी मेहरबानी मिठा मानो
1: रामचंद्र कुमार मकवान सिंह पारो
0: है भले याद करो। मेहरबानी लख थोरा साईं कुर्बत दिसंदासी हाणी काल ते केर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी कॉल ड्रॉप थी वही है ऐं कॉल ॾिसंदासीं कंहिंजी हूंदी। सो अवां खे असांजी ॻाल्हियूं यकीन हमेशा ॿुधणियूं पवंदियूं आहिनि, पर कॾहिं कॾहिं असीं अवां जी ॻाल्हि ॿुधंदा आहियूं। नंबर आहे 0334-3525-786 सवली सिंधीअ में 2-34-3525-786 अञा बि सवली सिंधीअ में 2-3-4-3-5-2-5-7-8-6 सो इन नंबर ते कयो कॉल, कंदासीं हाल अहिवाल, ॾिसंदासीं असां सां गॾु कॉल ते केरु हूंदो, केरु जुड़ंदो असां सां हाणे, छो त ट्रैक ते प्ले करे था वठूं, छो त तव्हांखे ट्रैक बि गॾु गॾु ॿुधाईंदा हलंदासीं ऐं हिन में हूंदा बैकग्राउंड ट्रैक। हिन में हिकड़ी दिलि जी ॻाल्हि आहे, दर्द जी ॻाल्हि आहे। दिलि जेका हूंदी आहे न उहा जॾहिं तंग कंदी आहे त शायर लिखंदा आहिनि उन्हनि ते लफ़्ज़। सो शायर लिखी छॾियो त डॉक्टर साहिब खे लिखियईं, डॉक्टर दिलि बदिली करे ॾे मूंखे तंग थी करे। अहिड़ी ॻाल्हि जॾहिं मुमताज़ मौलाई ॿुधी त उन वरी हीअं चई ॾिनो, ॿुधो।

0: दिल बदली करे डे डॉक्टर मुझे तंग थी करे सो दिसुंदा फिलहाल कॉल ते केर है सजा गड बाकी गालियों कयूं था गड गड हेलो अस्सलाम वालेकुम जी आवाज अच्छे से मुझे अलहमदुल्ला केर साहब आई किथां का रुस्तम छा हाल है खुश आयो ठीक आयो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे जी जी अच्छा अच्छा महिरबानी लख थोरा मिठा माण्हू लख थोरा ख़ुशि जो जी जी हलो अस्सलाम वालेकुम छा हाल आहे दिलीप कुमार शुक्र अलहमदुल्ला दुआ लॻी पई आहे हलो अच्छा आवाज़ में शायदि को मसलो आहे ॾिसूं था हाणे काल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब किथां खां शहज़ाद थोरो ज़ोर सां ॻाल्हाए हा शहज़ाद डंगणो पियो ॻाल्हाए शहज़ाद तलहार जे वेझो ॻाल्हाई पियो उन खां डंगणे जे ॻोठ मां हा अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे रेडियो ते मुंहिंजो आवाज़ घटि पियो अचे मां इंजीनियर खे चवां थो त मुंहिंजो आवाज़ वधाए इंजीनियर आवाज़ मुंहिंजो वधाए डंगणो साहिब ॿुधे पियो ठीकु आहे मां हाणे हाणे आवाज़ वधायां पियो ठीकु आहे छा करे ॿुधायां खिल ख़ुदा जे वास्ते हाज़ुर हाज़ुर हाज़ुर थैंक यू महिरबानी रंगणा साहब ऐं मौजूद स्वामी नज़रात दिल बदली थींदी आहे छा रहे प्यार खां परे दिल बदली बदली करे दे डॉक्टर मूंखे तंग थी दिल तंग थी करे डॉक्टर साहब बदली करे दे मूंखे तंग थी कहिड़ी मोटरसाइकिल जी इंजन हुजे बदली थींदी कोन थींदी दिल बदली अदा भा ओके जनाब ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम जी अलहमदुल्ला केरु साहब ऐं किथां खां
1: लोटो जी नगरी मां रामचंद कुमार मकवाणा मुखातब दिलबर
0: जी रामचंद छा हाल आहे ख़ुशि आहियो अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे रामचंद आरजी थी वियो आहीं जा सॼे जहान जा नाला वरिता अथई सॼे ॻोठ जा सॼे शहर जा सॼे सिंध जा तुंहिंजा दोस्त आहिनि त मुंहिंजा दुश्मन कोन्हे पाणे थी तंग न कर न त वरी दिल बदली करे ॾियारो गानो तोखे डेडिकेट करे छॾींदसि चलो चलो तुंहिंजो रेडियो सुठो आहे छा कजे तोसां मुक़ाबलो नथा करे सघूं बाबा हलो अस्सलाम वालेकुम हलो हलो अस्सलाम वालेकुम अच्छा जी आवाज़ कोन आयो शायदि कॉल ते ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम ओके जनाब कॉल्स इशू पियो अचे ॾिसूं था कंहिंजो आवाज़ आहे साईं मुंहिंजा आवाज़ हूंदो वालेकुम अस्सलाम केरु साहिब ऐं किथां खां खीर थर जबल खां छा हाल आहे साईं नालो पंहिंजो ॿुधायो जमशेद चांडियो साहब के चवंदासीं भलीकार खुश हुजो आबाद हुजो तारनि में चंड खीर में खंडु हुजो वेलकम था चऊं

0: जूं कालू लॻनि पियूं। वाह वाह वाह वाह, माना अॼु सखर असांजी जेका नशरियात आहिनि उहे ॾाढी पावरफुल तव्हां हले पई असांजे नेटवर्क जी। ईअं
1: बिल्कुल
0: न, ईअं न, इहे मोहबतूं आहिनि तव्हांजूं न, मोहबतुनि में माना लिखो थोरी कबो आहे।
1: यूनिस भाउ, कॾहिं कॾहिं ईअं मौजूद थी वेंदो आहे त हिक ॻोठ जे या हिक घर जे लिसनरनि जी बि कोलियूं गॾु मिली वेंदियूं आहिनि।
0: इहे कुदरती नसीब असांजो नसीब आहे न, हाणे किथे खबड़ी भिट आहे ऐं उतां खां कालू मिलनि पियूं। मां ईअं बि महसूस थिए त ॼण हाणे हाणे सखर जे ख़ूबसूरत उन असांजे सिंधु दरिया जे किनारे ते वेही तव्हांजूं कालू बि अटेंड कया।
1: बिल्कुल यूनिस भाउ, पूरी सिंध तव्हांखे ॿुधे थी ऐं सिंध खां ॿाहिरि बि तव्हांजो आवाज़ माशाला वेंदो हूंदो रेडियो जे ज़रिए।
0: यकीन
1: वञे थो,
0: बिल्कुल
1: रेडियो जे ज़रिए बि असांजो लाड़काणो आहे ऐं सखर आहे। इहे पंजाब ऐं बलोचिस्तान खे लमा बलमा नशियात ज़रूरु पुॼाईंदा।
0: बिल्कुल बिल्कुल पहुचाइनि था, बिल्कुल उतां कॉल्स अचनि थियूं, अचनि थियूं, बिल्कुल अचनि थियूं,
1: बिल्कुल। ऐं इन जी वजह सां तव्हांजी सिंध खां ॿाहिरि बि तव्हांजो आवाज़ वञे थो ऐं असांखे सिंध खां ॿाहिरि बि ॿुधो वञे थो।
0: जिते जिते
1: असांजो DFM 88 अञा बि तरक़ी कंदो ऐं अञा बि असांजी स्टेशनियूं वधंदियूं
0: इनशाला। थैंक यू वेरी मच। असां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: सलाम सिस्टर मिसिस अली ऐं सिस्टर फौज़िया फातिमा, सिस्टर दुआ खान राय, सिमरो मंता, सिमरो हुसैन बख़्शो, हाफिज़ गुलाम अहमद सांबल ऐं लुकमान चाचर, बच्चन चमानी, नज़ीर मंगरियो, अब्दुला बंगवा, जेके दोस्त ॿुधंदा सभिनी खे फाइनली थिए पियो।
0: वालेकुम असलाम, थैंक यू मिठा माण्हू, थैंक यू। ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम साईं।
0: साईं केरु साहिब ऐं किथां खां? छा हाल आहे मोहम्मद आचर ख़ासकेली साहब? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो? अलहमदुल्ला, अलहमदुल्ला, ॾाढी ख़ुशी थी अॼु असांखे तव्हांजो आवाज़ ॿुधण में अची वियो। इहो पुछा करियूं त मुंहिंजे ख़्याल में त मोरे ते हलंदो हूंदो, पर मां असां रिक्वेस्ट कंदसि मोरो जी टीम खे, प्लीज़ प्लीज़ मुंहिंजो आवाज़ ॿुधरायो, मुंहिंजा दोस्त ॿुधनि। ठीकु आहे साईं, इहो हूंदो न को टेक्निकल फॉल्ट हूंदो, मोरे वारा त ज़बरदस्त नशरियात ॾींदा आहिनि। इन जे करे असांजी जेका नेटवर्क आहे उन में को इशू न आहे, इशू हूंदो आहे न इंटरनेट में, इंटरनेट महबूब खां बेवफ़ा अथव। नखरो हूंदो, नेट जो नखरो न, पूरी दुनिया में वेचारा माण्हू मायूस थींदा आहिनि। सो को मसलो कोन्हे, इनशाला असां मोरे जी टीम खे रिक्वेस्ट कंदासीं कनेक्ट कनि त जीअं असांजा दोस्त ॿुधी सघनि। थैंक यू। असां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? वालेकुम असलाम, महिरबानी महिरबानी, लख थोरा साईं। ओके जनाब, हिकिड़ी कॉल अटेंड करे मूंखे ब्रेक वठणो आहे, ॾिसूंदा कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। छा हाल आहे लाशारी साहब, ख़ुशि आहियो? जी अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे, हथ जो रुमाल इनशाला ॿुधाईंदासीं, हथ जो रुमाल जो ज़मानो। आख़िरी कॉल, हलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: جی کیر صاحب ہیں، کتھاں کا؟
3: آج ضلع بچائے انوانی کرام شاہپور طرف۔
0: کیا حال انوانی صاحب، خوش آئے ہو، ٹھیک ہے؟
3: الحمدللہ
0: تمام بھائی رنگ دعا ون سدڑی ماں ون۔ اج سائیں مو ٹائم تمام گھٹ ہے، پچھندس تما سا کرے بھی کیر پہ بدے
3: اساں اگر بدے تے کیر کندو پر رستم علی پاور ایروشن علی پاور کے سلام۔
0: سلام علیکم السلام، اکھن تے سلام رکھی پوکلیوں پہ اگتی انشاءاللہ پہنچندا ہواں دی آدھر محبت تاں جو میٹھا مانو۔ ओके मस्जिद ख़वाती नज़रात, हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे, हिन आवाज़ खे ॿुधंदे ॿुधंदे कमर्शियल ब्रेक ॾांहुं वधूं था। बाक़ी अधु कलाक जो साथ हूंदो मुंहिंजे ख़्याल में, अधु कलाक में कंहिंजूं कंहिंजूं कॉलूं ईंदियूं उहे ब्रेक खां पोइ कॉल कजो, विच में बिल्कुलु कॉल न कजो। मां तेसिताईं थोरी देरि साही पटे वठां, पाणी जी लप पी वठंदुसि, थोरो साहु खणंदुसि, फुकारो खणंदुसि, फुकारो जंहिंखे चवंदा आहिनि, फुकारो खणी वापसि अचां थो। तेसिताईं हीउ गानो ॿुधी कमर्शियल ब्रेक था वठूं।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट आई मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले।
4: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: कहिड़ो ॾींहुं कुर्बे मिठा माण्हू कहिड़ो ॾींहुं कुर्बे ओके जनाब ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी कहिड़ा हाल आहिनि जी ख़ैर आहे केरु साहिब ऐं किथां खां
1: बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में तुंहिंजे पासे खां मोहम्मद सलीम अमदाणी प्लग साबरदस्ती ॻोठ गाज़ी ख़ान अमदाणी
0: अच्छा ख़ुशि आहियो अमदाणी साहिब ख़ुशि आहियो चङा भाल
1: सभु ख़ैर दुआऊं आहिनि अमन तव्हां ॿुधायो
0: अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
1: मूं सां गॾु मुंहिंजो कज़न आहे मुनवर अली अमदाणी
0: जी जी
1: अली गुलाब अमदाणी
0: जी जी
1: मोहम्मद सिद्दीक अमदाणी ऐं उमर फारूक अमदाणी
0: अखियुनि ते मिठा माण्हू लख थोरा तव्हांजा
1: अच्छा इहो हिकिड़ो अर्ज़
0: जी जी
1: इहो मेहराबपुर स्टेशन मैनेजर साईं अमन शाह लकियारी खे मुंहिंजा सलाम चइजो
0: वालेकुम असलाम साईं जिन बिल्कुलु ॿुधंदा हूंदा छाकाणि हिन महिल ड्यूटी जो टाइम आहे त बिल्कुलु साईं जिन स्टूडियो में मौजूदु हूंदा जेकॾहिं ॿुधनि पिया त तव्हांजा वालेकुम असलाम ज़रूरु चवंदा थैंक यू मिठा माण्हू थैंक यू जी जनाब ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम मिठा माण्हू ख़ुशि आहियो प्यारा माण्हू
0: अलहमदुल्ला केरु साहिब ऐं किथां खां
1: सर चूअर जमाली नाज़ नंगर खान जमाली
0: अखियुनि ते नाज़ नंगर खान जमाली साहब भलीकार चवंदासीं तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
1: साईं मुंहिंजो दोस्त आहे दिलीप कुमार मेघवाल बाबू सरकार रोस्तम अली पवर सिकंदर अली शबानी ऐं मोहम्मद सदीक पारो चूअर जमाली मोहम्मद हाशिम जमाली मोहम्मद मेहराब जमाली गुलाम कादर जमाली मेहताब अहमद जमाली नज़ीर अहमद जमाली बशीर अहमद जमाली नूर अहमद जमाली मोहम्मद रमज़ान जमाली अब्दुल रफ़ीक़ ख़ान जमाली सलाला ख़ान जमाली अब्दुल क़दीर ख़ान जमाली मोहम्मद जुमल जमाली
0: अबा नाज़ नंगर ख़ान थोरो ब्रेक ते पेर ॾे साथ खण अच्छा ठीकु मोहबत में साह त कोन विञाइबो न मोहबत में साह बचाइबो वे साह बि कोन विञाइबो
1: वे साह बचाइबो
0: ओके जनाब ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे पर गानो कहिड़ो आहे ॿुधो तुंहिंजे हथ जो रुमाल किथे रहिजी वियो कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम जी छा हाल आहे अदनान चांडियो साहब वेलकम था चऊं तव्हांखे तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे जी जी महिरबानी मिठा माण्हू लख थोरा तव्हांजा ओके जनाब कॉल ते ॾिसंदासीं केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी केरु साहिब असांखे ॿुधे पियो छा हाल आहे कलोड़ा साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चङा भला
2: अलहमदुलायो
0: अलाह पाक जा करम आहिनि कहिड़ो ॾींहुं करम आहिनि तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
2: मुंहिंजो भाउ मामा
0: इरफान थेबे साहब समेत सभिनी खे सलाम पहुची वियो आहे महिरबानी मिठा माण्हू कुर्ब तव्हांजा ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे हलो वालेकुम सलाम ज़ुल्फ़िकार भाउ मुंहिंजे ख़्याल में तव्हांजी कॉल अटेंड करे चुको आहियां न भले कटिजी वञे पर रिपीट कॉल अलाउ कोन हूंदी आहे मूंखे जेको आहे न मूंखे मार मिलंदी ख़बर अथई ॿ दफ़ा कॉल खणण ते ठहियो ठीकु आहे अवां सां ॿियो केरु पियो ॿुधे हलो कॉल वरी बि ड्रॉप थी वई आहे आवाज़ कोन पियो अचे कॉल ड्रॉप न आहे थी कॉल मूंसां कनेक्ट आहे पर आवाज़ कोन पियो अचे ॾिसंदासीं कॉल ते हाणे केरु हलो अस्सलाम वालेकुम छा थी वियो आहे वरी ॿी कॉल अटेंड थिए पई हलो अस्सलाम वालेकुम ओके जनाब आवाज़ कोन पियो अचे हलो चलो जी जेसि ताईं नई कॉल अचे तेसि ताईं थोरी देरि लाइ अव्हां खे गानो ॿुधायूं ओके जी हिन गाने खे थोरो रिवर्स कंदासीं थोरो ॿुधायूं था तव्हांखे त अनवर विस्तोड़ो साहिबु आहे उहो कंहिंखे खिलाइण जे चकर में आहे पर खिलण जी ॻाल्हि न पई थिए पहिरीं ॿुधो

బస్ ఏంటి ఆకాశం మళ్ళీ అఖిలి బ్యాస్ ओके जनाब अब ब्रेक है बिना ब्रेक यूनुस बकारी वापस हमारी कॉलू अटेंड कर नंबर है 0334352578 6 बुड़ी 800 टी पंजी 786 केर हों ब्रेक है

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: وعلیکم السلام کیر صاحب ہیں کتھا کھا آواز اچھے پیو اچھا جی آواز عجیب گال ہے آواز جو ہے وہ کون پی اچھے ان کے کرے پلیز جی کال کیا تھا کہ अहिड़ी जाइ तव्हां कॉल कयो जीअं तव्हां जो आवाज़ ऑन ईयर थी सघे कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त आवाज़ जेको आहे उहो अव्हांजो ऑन ईयर थियण में थोरो प्रॉब्लम कंदो आहे हाणे ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम
1: सर वालेकुम सलाम
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां जी छा हाल आहे चांडियो साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो अलहमदुल्ला तव्हां सां कॾहिं ॿियो केरु पियो ॿुधे नाला जल्दी वठो जल्दी वठो टाइम घटि
1: आहे
0: महिरबानी मिठनि माण्हुनि जूं असांखे भले पार खां ॿुधनि था ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां अच्छा जी अदा आवाज़ अचे पियो नालो पंहिंजो खणो जल्दी नालो खणो टाइम घटि
1: आहे
0: जी चांडिया साहब महिरबानी लख थोरा तव्हांजो आवाज़ क्लियर कोन थो अचे हा हवा आहे अलाह करे हवा हुन में हुजो ख़ुशि हुजो आबाद हुजो मिठा माण्हू कुर्ब ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां अलहमदुल्ला केरु साहब ऐं किथां खां अच्छा अवां सां कॾहिं ॿियो केरु पियो ॿुधे सभिनी खे सलाम मिली विया वालेकुम असलाम कुर्ब मिठा माण्हू कुर्ब तव्हांजा ख़ुशि हुजो ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम हलो वालेकुम असलाम केरु साहब ऐं किथां खां जी जी अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू किरोड़े कुर्ब हुकुम कयो साईं अर्ज़ न हुकुम उस्ताद जलाल जलाल शो जी शुरू में प्ले करे छॾियोसीं वरी सुभाणे वारे शो में हाज़िर कुर्ब साईं कुर्ब कुर्ब ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु पिया ॻाल्हाइनि हलो हलो अच्छा जी आवाज़ कोन पियो अचे कॉल ते ॾिसंदासीं हाणे केरु हलो अस्सलाम वालेकुम हलो बल्कि कॉल ड्रॉप थी वई आहे शायदि हलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब कॉल ड्रॉप थी वई आहे एॾो सॼण मूंखे छो थो वणी दीपा कंवल जो आवाज़ ही आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क मां शो ॿुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम ऐं मेज़बान आहे यूनिस बकारी अवां सां ॻाल्हियूं आहिनि जारी ओसारी आख़िरी असां वटि पंज मिंट बचा आहिनि कॉल करणु चाहियो था जल्दी सां कॉल करियो 0334352578 असांजो नंबर इन नंबर ते असां ॾिसंदासीं त असां सां गॾु कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
2: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केरु साहब ऐं किथां खां जी छा हाल आहे वाजिद चांडियो साहब तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे महिरबानी मिठा माण्हू महिरबानी लख थोरा कुर्ब कुर्ब ख़ुशि हुजो ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम
0: जी केरु पिया ॻाल्हायो छा हाल आहे साईं ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चङा भला महिरबानी अलहमदुल्ला तव्हांजी दुआ आहे अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे महिरबानी महिरबानी मिठो माण्हू कुर्ब तव्हांजा ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम साईं छा कहिड़ा हाल
0: आहिनि अलहमदुलिल्लाह केरु साहिब पिया ॻाल्हाइनि चाचड़ साहब मोहबतूं तव्हां जूं देरि सां पर ख़ैर सां तव्हां कॉल कई लख थोरा ख़ैर आहे ख़ैर आहे देरि सां पर ख़ैर सां चवंदा आहिनि त मोहबत जो सलाम हिकिड़े मिंट जो ई काफ़ी हूंदो आहे अखियुनि ते अव्हां जे सब्र खे सलाम साईं सलाम ॿियो अव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे वालेकुम सलाम महिरबानी लख थोरा ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम हलो आवाज न पियो अचे ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम ओके जनाब कॉल ड्रॉप थी वई आहे हिकु दफ़ो ॿीहर कॉल ॾांहुं वधंदासीं ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम ओके जनाब इहा कॉल ड्रॉप थी वई आहे इन जे करे

0: जी जनाब, उन खागे जो वक्त रे वहकरे जो अलार्म वजे यूनुस बकारी हलियो वने आखिरी कॉल्स अटेंड पे क्यों। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी तमा केर पे गलायो
1: ना गोट छाल दवानी का पोरो नाने पे गलाय।
0: जी छाल आवाज करे भी केर पे उदे जल्दी नालो उठियो तो वालेकुम अस्सलाम। केर साहब पिया गलाएं? अवां सां गॾु बलोच साहब, ॿियो केरु आहे? जल्दी नालो वठी वेठो, मूं वटि टाइम सफ़ा कोन्हे। ओके जनाब, इन्हीअ ते अॼोके प्रोग्राम जा सुहिणा सुहिणा रंग अवांजे नाउ कंदे असीं अवांखे मोकिलायूं पिया सुभाणे शाम जो 5 वॻे खां 7 वॻे ताईं वरी टाइम ताईं। साह जो सगड़ो सलामत रहियो, किस्मत साथ ॾिनो त वरी अवांजे हाज़िरी में हूंदासीं। तेसी ताईं उन खां अॻे जो मोकिलाइण जो को वाह वरे ऐं अवां वटि वरी अचूं। तेसि ताईं पंहिंजे दुआउनि में यादि रखिजो, जॾहिं बि दुआउनि जे लाइ हथ खणो त असांखे कॾहिं बि न विसारजो। चङो यारो यारी मोकिलाए थो यूनुस बकारी इन दुआ सां त जिते बि अवांजो पेर हुजे उते ख़ुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैर ई ख़ैर हुजे। उस्तादन वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं, निमन जूं छाऊं ऐं ख़ुशियुनि वारियूं हवाऊं अवांजो मुक़दर बणजनि। साथ सलामत, सिक सलामत असांजो अवांजो पाण सभिनी जो। अल्लाह निगेबान।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फॉस्फोरस की कमी का

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: नवन सूबन या इंतजामी यूनिट्स जो क्याम कौमी मसलो है। इन मामले ते किथां भी मज़ाहमत न थियण घुर्जे। यह फैसलो वफाक समेत सूबन के मजबूत कंदो। बचाव वाले वजीर ख्वाजा आसिफ अकबर भी नवन सूबन की हिमायत कंदे चयो त जेकॾहिं कंहिंखे सूबे जो लफ़्ज़ पसंद न आहे त इंतज़ामी यूनिट सॾियो वञे। सूबे जे मामले ते सियासी बयान वधाए पेश कया पिया वञनि। इस्लामाबाद खे सूबो ठाहियो पियो वञे त सुठो थींदो। अफ़गाननि बि कमज़ोर हालतुनि बावजूद पंहिंजे मुल्क में 35 सूबा ठाहे छॾिया आहिनि।

0: हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो जारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कालम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड रंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836

0: से आ वाह के गुल्ला आओ बा
1: हर अदा तू जी मस्तानी तो कहिया दिल दीवानी
2: रुलाए छजी राजन के

0: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज़ नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: ये क्या है?
1: हमारे प्यार की निशानी।
0: तुम इस रिश्ते को गलत समझ रही हो।
1: हमारा रिश्ता कुछ और ही बन चुका है अमर। We both love each other।
0: देखो दिशा,

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ऐं मलीर जे इलाइक़े लांडीअ में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन अंदरि फैक्ट्री जे इमारत खे लॻल बाह ते अञा ज़ाब्तो न आयो। बाह भर वारे फैक्ट्री खे बि पंहिंजे लपेट में आणे छॾियो। बाह सबबि इमारत जो हिकु हिसो किरी पियो। 16 फायर टेंडर्स, नारकल ऐं वाटर बाउज़र्स बाह विसाइण जी कोशिशुनि में रुधल। सिंध रेंजर्स जा जवान बि रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। दूहे में साहु सारजण करे हालत ख़राब थियण ते ॿिनि औरतुनि हिकु मर्द खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। वॾे वज़ीर वाक़े जो नोटिस वरितो। मुराद अली शाह चयो आहे त बाह ते ज़ाब्तो आणण लाइ समूरा वसीला कतबांदा वेंदा। सभई लाॻापियल अमलदार बाह ते ज़ाब्तो अचण ताईं वाक़े वरी हंधि मौजूदु आहिनि।

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
5: रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और

products: Milk Rice Beauty Cream, Milk Rice Beauty Soap, Milk Rice Acne Cream. हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105109, 03000-3105109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए।

मिल्क फेस ब्यूटी शो के साथ मैं हूँ आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं GFM 94 मेहरापुर। GFM 94 के सुनने वालों को वेलकम भलीकार खुशामदी जी हैं और वशात के और पखैर रागले।

जी तो दुनिया सारी दीवानी है ब्यूटी की, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एग्नि क्रीम और मिल्क राइस विटामिन सी। खूबसूरती जो नजर आए, भरोसा जो दिल जीत ले। जी तो मेरा पुरवालो, आपके लिए प्रोडक्ट्स हमारी अवेलेबल इजाफा होता जा रहा है और मजीद जनरल स्टोर्स पे स्टॉक अवेलेबल है। मजीद अवेलेबिलिटी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन कॉलिंग नंबर है 0300-310-5109। आप कॉल करके मलिक जफर इकबाल साहब और एम सिद्दीक साहब से बात करके मजीद अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं प्रोडक्ट की। और ऑलरेडी जिन जनरल स्टोर्स पे हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनमें से फैजान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मेहराबपुर, हफीज जनरल स्टोर मेहराबपुर, कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर, जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर और अलकरम जनरल स्टोर मेहराबपुर।

जी तो दोस्तों, मिल्क राइज ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 94। आज हम आपको मजीद न्यू, पिछली हमने रिडल दी थी, रिडल पे काफी बहुत सारे दोस्तों के जो है कि टेक्स्ट आए थे, लेकिन बहुत ही टिपिकल रिडल थी, यानी कि पहली थी, गुजारो तो ही टिपिकल, आज भी टिपिकल कोई रिडल भी होगी, टॉपिक भी होगी और हमसे बात भी आप कर पाएंगे। हमसे बात करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03009319667।

डेफिनेटली आपको जो है कि हम फ्री की टिप्स देते हैं उन्हें, तो आप संभाल के लाजमी रखते होंगे, और आप ही की सेहत और आप ही की ब्यूटी के लिए हम आपको मुफ्त के मशवरे भी देते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुफ्त के मशवरों पे काम नहीं चलेगा, आपने जो है कि मिल्क्राइस ब्यूटी शो में कॉल करके ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बातचीत करनी है, और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके स्टॉक की अवेलेबिलिटी भी करवा सकते हैं। उसके साथ साथ आपने आजमाना शर्त है, क्योंकि आजमाए शर्त है, हम दावा नहीं दलील देते हैं। जी शाही बाजार मैरापुर में हमारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, अगर किसी को मजीद अवेलेबिलिटी के लिए स्टॉक चाहिए तो उसके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0300-310-5109। मलिक जफर इकबाल साहब और एम सिद्दीक साहब से बात करके आप प्रोडक्ट अवेल कर सकते हैं।

आज के प्रोग्राम का आगाज इस खूबसूरत धमाल से करेंगे, उसके बाद आके आपको रिडल भी देंगे और मजीद टिप्स भी देंगे, तो एंजॉय करें खूबसूरत सी धमाल।

वेलकम बैक मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं GFM 94 मेहराबपुर। जी तो हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03009319667। इस पे आप कॉल करके हमें अपने प्रोडक्ट के हवाले से फीडबैक देंगे। जो जो दोस्त अभी तक यूज नहीं किए जिन्होंने, वो जाकर जो है कि शाही बाजार मेहराबपुर से हमारी प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि हम दावा करते हैं उसका दलील भी देंगे। खूबसूरती जो नजर आए, भरोसा जो दिल जीत ले। जी प्रोडक्ट लेने के लिए बहुत आसान सा एड्रेस है, आसान सा तरीके का रहेंगे। मेहराबपुर में बहुत सारे जनरल स्टोर्स पे हमारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हमारी प्रोडक्ट्स में शामिल है मिल्क राइस, ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस सोप, मिल्क राइस एग्नी क्रीम, मिल्क राइस विटामिन सी। और अवेलेबल जहां है वो स्टोर्स हैं फैजान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मेहराबपुर, हफीज जनरल स्टोर मेहराबपुर, कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर, जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर और अलकरम जनरल स्टोर मेहराबपुर।

जी जनाब, तो रेडी हो आप कि आज की हम रिडल आपको बताएं। आपके टेक्स्ट मैसेजेस भी शामिल होंगे, कॉल भी शामिल होगी, और रिडल आज की जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी तो दोस्तों, आज की रिडल यानी कि पहली है, वो कौन सी चीज है जो खाना हराम है और पीना हलाल है।

जी दोस्तों, आज की रिडल पहेली बूझने के लिए आपने हमें लाइव कॉल करनी है और टेक्स्ट भी कर सकते हैं हमें लाइव कॉलिंग। हमारा नंबर है 03009319667। और इसी नंबर पे आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और अगर जो दोस्त हमें फेसबुक लाइव पे सुन रहे हैं तो वो हमारी पोस्ट पे कमेंट भी शामिल कर सकते हैं।

जी दोस्तों, सॉन्ग असां रिडल ॿुधाईसीं ऐं रिडल जे रिप्लाई जा मुंतज़िर आहियूं। अवां असांखे रिडल जो रिप्लाई टेक्स्ट ऐं कमेंट वसीले, उन खां अलावा लाइव कॉल जो ऑप्शन त डेफिनेटली हर वक़्तु मौजूदु आहे। लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0300-931-9667 ते। ऐं यादि रहे त मिल्क राइस ब्यूटी शॉप जी प्रोडक्ट आहिनि मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम। ऐं इन्हनि खे हासिल करण लाइ अवां असांजे हेल्पलाइन नंबर ते बि कॉल करे सघो था स्टॉक जी अवेलेबिलिटी लाइ। उन खां अलावा डायरेक्टली बाज़ार में वञी करे, मेहरापुर जी शाही बाज़ार में वञी करे अवां हिन जनरल स्टोर्स तां मिल्क राइस जी का बि प्रोडक्ट वठी सघो था। जनरल स्टोर्स में शामिल आहिनि फैज़ान जनरल स्टोर मेहरापुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मेहरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मेहरापुर, कोरी जनरल स्टोर मेहरापुर, जावेद जनरल स्टोर मेहरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मेहरापुर। प्रोडक्ट्स जी अवेलेबिलिटी लाइ एनी टाइम असांजो हेल्पलाइन नंबर अवां लाइ अवेलेबल मौजूदु आहे, जंहिं ते अवां कॉल करे मलिक ज़फ़र इक़बाल ऐं एम सिद्दीक साहब सां ॻाल्हि करे सघो था। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-5109।

ख़ूबसूरत थियणु हर इंसान जी ख़्वाहिश हूंदी आहे ऐं ख़ुदा हर कंहिं चेहरे खे ख़ूबसूरत ठाहियो हूंदो आहे। जस्ट असांजी वधि में वधि मथां थोरी घणी जेका आहे त फिनिशिंग ॾियण लाइ असांजी प्रोडक्ट्स अवान लाइ अवेलेबल आहिनि। मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल आहिनि, प्रोडक्ट्स आहिनि मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम ऐं मिल्क राइस वाइटमिन सी। खूबसूरती जो नज़र आए, भरोसा जो दिल जीत ले, हम दावा नहीं दलील देते हैं, और हमें दलील देने का मौका आप देंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने मेहराबुर की बाज़ार में जाके, शाही बाज़ार में जाके मिल्क राइस की कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेज़ करनी है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने सोप से अपना चेहरा धोकर और ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करनी है। एक्नी तो डेफिनेटली आपको कील मुहासे दाग धब्बे छाइयाँ अगर हैं तो एक्नी क्रीम सुपर फार्मूला है मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स का।

जी, रिडल्स के बहुत सारे रिप्लाई हमें टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू मौसूल हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई एक आधा दोस्त हमें कॉल पे अपने रिस्पॉन्ड भी दे, फीडबैक भी दे हमारी प्रोडक्ट के हवाले से और आज की रिडल के हवाले से रिप्लाई जो लाइव कॉल पे दोस्त देना चाहते हो। हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03-9319-667 और आज की रिडल है वो कौन सी चीज़ है जो खाना हराम है और पीना हलाल है।

खूबसूरत सिंध धरती जो प्यारो गीत तमाम जी एफ एम 94 जे बुधंदड़नि ऐं असांजे प्यारनि दोस्तनि मलिक ज़फ़र इक़बाल ऐं एम सिद्दीक़ जे नाम. लेट्स एंजॉय द ट्रैक.

जी बिल्कुल, इन में को शक ना है तो सिंधड़ी ते सिर केर न डींदो सहंदो केर मयार सिंध अमर जो हलाली पुट कदें भी सिंध ते आंगुर कोन सर।

जी खूबसूरत कॉलर असां सां गॾु हुयो हुसैन बख्सयाल। हुसैन बख्सयाल प्रोडक्ट जे हवाले सां फीडबैक खां अॻु में उनखे परचेस करण लाइ बाय करण लाइ उन्हनि ॻाल्हि ॿोल कई त उन्हनि असांजे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे मलिक ज़फ़र इक़बाल ऐं एम सिद्दीक साहब सां ॻाल्हि ॿोल बि कई आहे ऐं प्रोडक्ट लाज़मी परचेस कंदा यकीन। ॿिया दोस्त जिन कॉल कोन कई आहे मूंखे हिन महिल ताईं प्रोग्राम में, जिन जा टैक्स्ट मैसेजिस असांखे ईंदा आहिनि, प्रोडक्ट उन्हनि वरिती बि आहे, इस्तेमालु बि कनि पिया ऐं असांखे फीडबैक लाज़मी ॾींदा।

0: असां सां गॾु कॉलर आहे, असां हिकिड़े प्रोग्राम में कॉल शामिल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? हलो हलो
1: हलो,
0: अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां?
1: हलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, केर प्यारा किथां खां?
1: हलो
0: जी, आवाज़ अचे पियो अवां जो, किथां खां केर?
1: हलो
0: जी,

0: शायदि नेटवर्क जो को फॉल्ट हुयो, कॉल डिस्कनेक्ट थी वई। असांखे लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0300-931-9667। कॉल अगेन अची रही आहे, कॉल शामिल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? मोहम्मद इब्राहिम ख़ास केली ठरी मीरवा खां। वेलकम भलीगार, ख़ुश आमदीद प्यारा प्रोग्राम में। साईं मुंहिंजा प्रोग्राम कीअं पियो लॻे? ऐं प्रोडक्ट जे बारे में थोरी घणी का ॼाण, का मालूमात, का प्रोडक्ट वठण जो इरादो? न त हुकुम कयो, असां ठरी मीरवा में अवेलेबल करायूं।
1: अच्छा सर।
0: हा, तव्हां असांजी हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे ठरी मीरवा में बि अवेलेबल कराए सघो था। मलिक ज़फ़र इक़बाल साहब ऐं एम सिद्दीक़ सां ॻाल्हि ॿोल कंदो। हेल्पलाइन नंबर अथव 0300-310-5109। इहो आफ्टर जेको आहे रिकॉर्डिंग बि प्रोग्राम ॿुधी वठिजो, नंबर बार बार असां रिपीट कयूं था पिया। सो अव्हां प्रोडक्ट पंहिंजे शहर में बि अवेलेबल कराए सघो था, अदरवाइज़ मेहरापुर बि अव्हां खां परे कोन्हे का। हलो, प्रोडक्ट मिली वेंदी भाउ अव्हांखे जेकॾहिं इस्तेमालु करणु चाहींदो असांजो प्रोडक्ट?
1: बिल्कुलु बिल्कुलु साईं, छो न।
0: क्या बात आहे, ज़बरदस्त। अॼो की गुज़ारत ॿुधी अव्हां? जी थी सघे थो कावड़। अव्हांजो रिप्लाई असां नोट करे छॾियोसीं, प्रोग्राम लाज़मी ॿुधंदा रहिजो, आख़िर ताईं असां हिन जो रिप्लाई लाज़मी ॾींदासीं। जी जी, सलाम सलाम असां बि ॾींदासीं तव्हांजे दोस्तनि खे। सलाम जी, सॼी संगत मुंहिंजे तरफ़ां बि सलाम।

मिल्क राइस ब्यूटी शो, मिल्क राइस जो प्रोडक्ट अवां के मिली वेंदियूं इन्हनि जनरल स्टोर से, फैज़ान जनरल स्टोर मेहरापुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मेहरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मेहरापुर, कोरी जनरल स्टोर मेहरापुर, जावेद जनरल स्टोर मेहरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मेहरापुर।

जी दोस्तों, मिल्क राइस ब्यूटी शो से गुड आऊँ आबिद चौहान आया बुधी रहा है जी एफ एम 94 मेहराबपुर। तो दोस्तों असाजे अजो के प्रोग्राम जो वक्त लगभग पैंजी पुजानी पोतो है, पर इन खा अग मोकलाण खा अग में असा अजो की रिडल यानी कि गुजारत अवां के बेसब्री से इंतजार होंद बिन टिन दोस्तन असा के लाइव कॉल वसीले वह गुजारत भरण की कोशिश कई है। कें जो राइट आंसर है वो असा रिप्लाई का पो अवां के खबर पैजी वी उन गो गुड जिन दोस्तन टेक्स्ट मैसेज में असा के रिप्लाई मोकलियान उ भी ध्यान से बुधन त अजो की रिडल। कुछ दोस्तन बुधन में गलती कई, कुछ दोस्तन यो समझो तो मां शायद चवण में गलती कई है। मां अगेन रिपीट तो पे क्या तो गलती चवण में का भी ना है। मां वरी भी चवां तो वह केड़ी शय है जो खाण हराम पर पीण हलाल है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो खाना हराम और पीना हलाल है? जी तेने जो रिप्लाई है थोड़ी देर अग एक दोस्त हाँ कॉल से भी अवे दिनो कावड़। कावड़ खाण हराम आ कावड़ न करबा, गुस्सा हराम है करना, और गुस्से को पी जाना हलाल। हलाल से मुराद है कि जायज़ गुस्सा पी जाओ सभी कहते हैं। तो राइट आंसर जिन्होंने हमें ये दिया है कावड़ वे दोस्त राइट आए। इन सा गड पैं मेज़बान आबिद चौहान के इजाज़त दींदा, वरी सुभाने मुलाकात कंदे नई एपिसोड नई जो आड़ी गुजारत से गड अव कौ ही ट्रैक इंजॉय। सिन सलामत, साथ सलामत, अल्लाह ने के बान।

असांजे असासनि खे निशानो बणायो वियो त ख़िते में मौजूद अमरीकी असासा बि महफ़ूज़ न रहंदा। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाफ अमरीका खे ख़बरदार कंदे चयो त तहरान पंहिंजी जवाबी सलाहियत साबित करे चुको आहे। ईरानी असासनि ते हमलनि जो जवाब अमरीकी तेल ऐं गैस कंपनियुनि ते हमला करे ॾिनो वेंदो।

पवंदो। कतरी परदेही वज़ार जे तर्जुमान जो चवण आहे त रुगो अरब मुल्कनि खे अमरीका ते भाड़न बदिरां स्ट्रेटेजिक मामलनि में पाण भरो थियणो पवंदो। सिक्योरिटी मामलनि में वधण सां ई दिफ़ा यकीनी बणाए सघिजे थी।

0: पंजाब में 1 करोड़ खां वधीक बार स्कूलन खां बाहर आहिन, कंहिंखे नज़रअंदाज नज़र नथा अचनि। सभिनी खे रुगो सिंध अंदर बुरायूं नज़र अचनि थियूं। सिंध जे तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह चयो आहे त सिंध में बोझ सबबि केतिरा ई स्कूल तबाह थिया। को ॿुधाए त सिंध जी कंहिं मदद कई? सपोर्ट नथा कयूं त घटि में घटि ज़ख़्मनि ते लूण त न हारियो। सूबाई वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो त नवनि सूबनि बाबति रिथ आणण जो एमक्यू।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर।

0: जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज आज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राबते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000

आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई 0307 3592120

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-335-69।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-83-47।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

मुझे रूह जो रागी थोपो जबल झांगे, मुझे रूह जो रागी थोपो जबल झांगे, धुन ब्याहे कोहियारी राग भे पहाड़िया। मुझे रूह जो रागी थोपो जबल झांगे, धुन ब्याहे कोहियारी राग भे पहाड़िया। हर जुबान अटके थी कुछ न थो बुधे कोई, हर जुबान अटके थी कुछ न थो बुधे कोई, जो चपनते चुप्पा है छो कनंते ताड़िया।

0: राहन जा मुरकंदड़ सभी रमता। मक्तलन जी राहन जा मुरकंदड़ सभी रमता, सिंध तोसा निस्बत में कंधते कुहाड़िया। आऊं पहंजे लहजे में अजनबी किथे आया, आऊं पहंजे लहजे में अजनबी किथे आया, इश्क मुझो उतरा दी दर्द मुझो लाड़िया। रूह बे अजा रंजीदा दिल बे डाढ़ी बाड़िया, हाय मन जी मोमल जी अज उदास माड़िया।
1: इंतू

Ligado? Ah, é Robert Johan. É, vamos dizer, é o GAFM Network. Dosto, program me lazman awajun calling shamil kanda hun, ai behad khushi thindi aahe awan sa gal bol kare. Pehri asan ji koshish hundi aahe ta ibtada me awan sa gad chand galhun share kajan. Unhe khab poe asan poetry bhi shamil kyun, awan pehji poetry shamil kare sako tha. Asan ke text vasile SMS karan lai 3331 te अवां मैसेज करे सको था पहले जो प्यार जो पैगाम दे सको था और खाली अवां शायरी पन शामिल करे सको था उनके अलावा अवां असां के लाइव कॉलिंग वसीले कॉल भी करे सको था थोड़ी देर में अवां की कॉलिंग वट दूं असां लाइव कॉल नंबर है 03 triple 0 11 34 double it.

अचो त यादुनि खे वरी ताज़ो कयूं। राति जे हिन थधड़े पहर में ख़ूबसूरत ट्रैक अख़्तर दरगाह जी शायरी शख़्स हिकिड़ो यादि आयो शाम जो।

0: मदा छो पे
1: कोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
0: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न दा
2: यन तोड़े गोछन में जी नंडा बयो जो ए
0: मितला मिलाद मजलिस
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: प्रोग्राम में शामिल कंदासे लाइव कॉल असा सा गड कॉलर मौजूद आहन अस्सलाम वालेकुम केर पर किथा खा अस्सलाम
1: वालेकुम
0: वालेकुम सलाम केर साईं किथा खा
1: साईं मां साईं फकीर लड़काने का अगे दफे भी कॉल कई से प्रोग्राम गुजरी हो ता कॉल ते न गई
0: अज अज थी वई प्रोग्राम जे दौरान बिल्कुल बाद में भी थी हुई पर जो स्टेशन ऑफ थी चुको हो
1: नालो
0: बुधायो मां रिपीट कयां भाउ जो नालो
1: साजी फकीर
0: लाड़काणो असांजे सांगी ते यादि आयो त अलीगुल सांगीअ जो शहर आहे अलीगुल सांगी तमामु सिंध जो नाले वारो शाइर आहे सुरमो करे तोखे पायां आओ त अखियुनि में लिकायां अलीगुल सांगी सूर समूरा वेह पिरी त ॿुधायां तोखे आओ तो आखिर में लिखाया तो के
1: बस ये ता ने गाली मारन थी अल्लाह फिक्र के सलामत भरी टीम के
0: अमा भी काड़ी प्यार भरी का मोहब्बत भरी गाल कयो जो सजी एफएम नेटवर्क जी संगत बुधी करे दिल खुश थी वने
1: ते मोहब्बत भरी गाल या है तब पाण में कृप से गालाए बोलायो
0: जी
1: के सा नाराज न थियो कि दिल नाराज आ रहयो तो हिन में ई मोहबत में ई जहान आहे
0: बिल्कुल बिल्कुल ईअं ई
1: आहे केतिरो बि कीनो हूंदो आख़िर आख़िर वञी मोहबत कम ईंदी आहे
0: अच्छा कावड़ भला कंहिंखां थींदी आहे कावड़ बि त आहे हिकिड़ो
1: थींदी आहे प्यारा ई कावड़ बि आहे न
0: बिल्कुल प्यारनि सां प्यारा ई कावड़ बि आहिनि प्यारनि खे परचाइण बि घुरिजे
1: परचाइण बि हूंदो आहे परचाइण में बि मज़ो आहे
0: भला अॼु कंहिं रुठलनि खे असांजे हिन एफ एम नेटवर्क वसीले परचाइण जो पैर जो पैगाम ॾियो

0: लाजवाब लाजवाब जियो जियो बिल्कुल संगत जो नाम को शामिल करना चाहे को
1: बस नालो
0: सलाम को संगत जी
1: नादर हुसैन
0: जी क्या
1: मंजूर अली
0: जी
1: बियो खादिम हुसैन
0: ये सभी कावड़ल न मागा
1: बस समझ तो मज कावड़ल
0: अदा संगत जी करे बुधे थे तो बेली पर्ची पो यार
1: मेहरबानी साईं तां जी वरी
0: अवां तरफा को इनन के गीत डेडिकेट क्यों
1: जी साईं जी जी अल्लाह खुश रखे
0: वरी मेहरबानी लव यू प्यारा कुर्बान थैंक यू मोहब्बत सलामत हो जो लव यू टू
1: मेहरबानी मेहरबानी

0: बैक टू बैक कॉल अटेंड कंदा से छाकाण त ॿाहिरूं दोस्तनि जूं काफ़ी हूंदियूं त कॉल घटि था पिया अटेंड कयूं. कॉलर आहिनि असां सां गॾु. अस्सलाम वालेकुम, केरु प्यारा, किथां खां?
1: वालेकुम सलाम साईं, आसिफ अली चाचड़ लाड़काणे खां आवाज़ु ॿुधे पियो.
0: आसिफ अली चाचड़, वेलकम भलीकार, ख़ुश आमदीद प्यारा प्रोग्राम में.
1: साईं अवां ॿुधायो, अवांजी तबियत कीअं, अवांजा कहिड़ा हाल आहिनि?
0: ए वन दुआऊं अवां भाइरनि जूं.
1: अवांजो प्रोग्राम ॾाढो बहितरीन हली रहियो आहे, पर दुआ आहे त ॿ घंटा कनेक्ट करे.
0: इनशाला इनशाला
1: साईं, अवांखे हिकिड़ो घंटो ॿुधाईंदासीं, घंटो नथा ॿुधाऊं, ॼण मज़ो ई नथो अचे, राति निंड ई नथी अचे.
0: भाउ मार छोड़े सफ़ाई, असांजी बि निंड फिटाए छॾी अहिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि करे. जेके ॿिया दोस्त ॿुधी रहिया आहिनि, वेटिंग में आहिनि, जिन जी कॉल मुसलसल कंटिन्यूसली असांखे फोन ते हली रही आहे, उन्हनि सभिनी खे ॿुधाइण थो चाहियां त हीउ प्रोग्राम मुसलसल ॿ कलाक करण खां पोइ मां घर वञी बि जेको आहे राति जो रिकॉर्डिंग ॿुधंदो आहे. भरिसां माई जेका हिते चवंदी आहे त बस बि कर, हाणे कॉलर सां अञा ॻाल्हाईंदे, असां सां बि ॻाल्हाईंदे, एॾियूं मोहबतूं मान मिलनि थियूं अवां खां, बिल्कुलु दिलि ख़ुशि थी वञे थी जी. प्यारा इनशाला असांजी कोशिश हूंदी त लाड़काण ते जेको असांजो आहे उते स्टेशन, उहे प्रोग्राम खे ॿ कलाक पूरो कंदा इनशाला. ॿुधी रहिया आहिनि उहे बि फीडबैक, अवां जूं कॉलिंग जूं मुसलसल मोहबतूं इनशाला. बस पो असां अव्हां जी इन्हनि दाह खे असां अॻिते पहुचायूं था. असांखे इन प्रोग्राम ते अव्हां जे लाड़काणे मां स्पॉन्सर मिलंदो त असां तव्हां जे लाड़काणे में इहो लिंक ओपन कराईंदासीं. जी बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं, बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं. को सलाम, को दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहियो प्रोग्राम में?
1: मुंहिंजा दोस्त ॿुधंदा
0: जी,
1: वापसि बुकी चाचू मुस्लिम बुकी, अली सोमो, अली वफ़ा, अब्दुल भाई जतई,
0: वाह साईं वाह वाह वाह वाह, सभिनी सभिनी खे मुंहिंजे तरफ़ा सलाम भाउ, ऐं उन्हनि खे इनशाला असां गीत कोन को ख़ूबसूरत बल्कि अव्हां जी फरमाइश वारो डेडिकेट
1: कंदासीं.
0: लाज़मी लाज़मी असां पंहिंजी प्ले लिस्ट में शामिल था पिया कयूं त हलबो हाणे लॾे लॾे बेकदरनि खे छॾे छॾे, काॾे वञी रहिया हूअ, कहिड़े पार लाड़काणे वारा तमामु प्यारा माण्हू आहिनि. बसि असांखे असां चई छॾियोसीं न, असां हाणे लाड़काणे जो कोशिशि कंदासीं, ॿ कलाक हलायूं प्रोग्राम. ठीकु आहे प्यारा, ॿुधंदा रहो.
1: बाबर शेख बि चई थी छॾी
0: कयां, छा थो करे, अमल ई नथो करे. बाबर इहो प्रोग्राम ॿुधंदो, रिकॉर्डेड प्रोग्राम ॿुधंदो, अव्हां जी फरमाइशूं जेके आहिनि इनशाला ज़रूरु पूरी थींदी. जुड़िया पिया हुजो, अव्हां जी मोहबतनि जा लख थोराए था. इनशाला कनेक्ट थींदो, लाड़काणे में थींदो इनशाला. वरी महिरबानी, लव यू, लक लाइक, थैंक यू.

वक़्तु थियो आहे हिकिड़ी नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जो. कमर्शियल ब्रेक खां पोइ अवां जो वरी कॉलिंग अटेंड करण जो सिलसिलो जारी रहंदो. ॿुधंदा रहो जी एफ एम एट नेटवर्क.

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

अच्युत गज्जी रहमान बुगल जे आवाज में खूबसूरत गीत एंजॉय क्यों हलबो हाणे लडे लडे बेकदरन जे शहर के छडे छडे।

माज़रत खाहियूं, कॉल डिस्कनेक्ट थी वई. असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0300 011 3488. नंबर रिपीट थो कयां, 0300 011 3488. इन ते अव्हां असांखे वॉइस मैसेज पैगाम बि उमाणे सघो था, ऐं असांखे एस एम एस करण लाइ 888 1 ते एस एम एस बि करे सघो था. छा चवां मां तोखे, छा चवां मां तोखे, गुल चवां त विखरी वेंदे, दिल चवां त टुटी वेंदे. छा चवां मां तोखे, गुल चवां त विखरी वेंदे, दिल चवां त टुटी वेंदे. सिज चवां त लही वेंदे, चंड चवां त ककरनि में लिकी वेंदे. मौसम चवां त बदलजी वेंदे, मुसाफिर चवां त विछड़ी वेंदे. मौसम चवां त बदलजी वेंदे, मुसाफिर चवां त विछड़ी वेंदे. हली आओ उस्ताद बुखारी, तुंहिंजो नाम ज़िंदगी रखां, बची पवंदुसि जे मिली वेंदे.

जॾहिं लफ़्ज़नि खे बयान करण ॾुखियो थी पवे तॾहिं दिलि जा अहसास पाण ई ॿोली बणजी पवंदा आहिनि। दिलि जी ॻाल्हि हिकु ख़ूबसूरत अहसास जो नाव आहे। दिलि जी ॻाल्हि उहा ॻाल्हि आहे जेका हूअं त हर कंहिं सां सलबी नाहे पर पंहिंजनि प्यारनि सां ज़रूरु शेयर कबी आहे। अचो त हिकिड़ो कॉलर असां सां गॾु आहे, ॿुधूं था उन जे दिलि जी ॻाल्हि।

0: परेशान हो।
1: नेटवर्क पर अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: समाजी, सकाफती।
2: मंजूर टलटलाव सदर, वजीर आजम, सेनेट ए कौमी असेंबली सेक्रेटरी डां भी माने वो सिंध असेंबली खमीस वाले डी सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ ठहराव मंजूर किया हो। MQM समेत PTI जमात इस्लामी जा मेंबर ऐवान मां वॉकआउट करे वा हुआ।
3: ये अच्छा स्टेप है कि इस्लामाबाद में पहले इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट अदारा कायम किया जाए, तो ये एक इंसेंटिव होगा स्टूडेंट के लिए कि वो उसको फॉलो करें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी सारा इंतजाम और इंतजाम होगा, उसके लिए उनको एक आप सुबह कह लें, आप उसको इंतजामी यूनिट कह लें, जो मर्जी उसको टाइटल दे। पॉलिटिकल जो है उसकी कॉनोटेशन जो है इस चीज़ की, वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ओवरब्लो की जा रही है। ज्यादा रोबस्ट और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा। नेशनल इशू है, इसमें कहीं से भी रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए। सारी दुनिया में चीजें होती हैं जो फर्ज करें किसी सूबे में एक किसी सियासी पार्टी की हुकूमत नहीं रहती। मेरा ख्याल है ये वफाक की भी नफी नहीं करता, वफाक को भी मजबूत बनाएगा।
2: नवन सूबन या इंतजामी यूनिट्स जो क्याम कौमी मसलो आहे, इन मामले ते किथां बि मज़ाहमत न थियण घुर्जे। ये फैसलो वफाक समेत सूबन के मजबूत कंदो। बच्चा वाले वजीर ख्वाजा आसिम कुबर बीहर नवन सूबन जी हिमायत कंदे चयो आहे त जेकॾहिं कंहिंखे सूबे जो लफ़्ज़ पसंद न आहे त इंतज़ामी यूनिट सॾियो वञे। सूबे जे मामले ते सियासी बयान वधाए पेश कया पिया वञनि। इस्लामाबाद खे सूबो ठाहियो पियो वञे त सुठो थींदो। अफ़गाननि बि कमज़ोर हालतुनि बावजूद पंहिंजे मुल्क में 35 सूबा ठाहे छॾिया आहिनि।
4: वफाकी गुजरा बात कर रहे हैं जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है। अनफॉर्चुनेटली वो वफाकी गुजरा बात कर रहे हैं। अवाम से इलेक्ट होके आओ, अवाम के वोटों से जीतो, फिर आके आप लोग खैराती मैंडेट में आके बैठ के, आप लोग खैराती मैंडेट में आके बैठ के आप बैठ के कौम के फैसले नहीं करोगे। जो सर ये खैराती मैंडेट में बैठे हुए लोग हैं ये कौम के फैसले नहीं करेंगे, कौम के फैसले इलेक्टेड लोग।
5: शर्जील साहब मुझे मोशन पुट करने दे। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस दोज हु आर फॉर
2: खैराती मैंडेट ते आयल वफाकी वजीर अणी तरमीम ऐं सूबनि ते ॻाल्हाए रहिया आहिनि। खैराती मैंडेट ऐं फॉर्म 47 ते आयल क़ौम जा फैसला न कंदा। पहिरीं हीअ अवाम वटि वञनि, मैंडेट वठनि, पोइ ॻाल्हियूं कनि। क़ौम जा फ़ैसिला फॉर्म 47 वारा न पर अवाम जा चूंडियल नुमाईंदा ई कंदा। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो त वफ़ाकी वज़ीरनि खे ॻाल्हाइणो आहे त पार्लियामेंट में ॻाल्हाइनि त खेनि जवाब बि मिली वेंदो, बाक़ी मीडिया ते ॻाल्हाइण सां कुझु न थींदो। वफ़ाक सिंध में 77 सालनि खां हिकु बि मोटरवे नाहे ठाहियो। सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी। बिजली बि सिंध समूरे मुल्क खे ॾेई रही आहे पर हिते लोड शेडिंग सभिनी खां वधीक आहे।

0: अगर अब वोसन नकवी के मुंह से हमने सिर्फ वैक्सीन की बात सुनी तो वोसन नकवी के स्कीम में से पहले हम घरों को वापस नहीं जाएंगे।
1: सिंध के विरहाङे जो मकसद अवाम के विराए वसीलन ते कब्जो करण आहे। मोहसन नकवी बीहर सिंध के विराइण जो बयान दिनो तो संदस इस्तीफा का सवाए वापस घर न वेंदासीं। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार जे सेमिनार में मुल्की वकीलन जो वाज़े ऐलान। वकील अगवान सलाउद्दीन अहमद चयो तो मोहसन नकवी जे पुठियां वेठलन बाबत इहो चवण सही आहे तो उहे वायरल
2: इंतज़ामी यूनिट जो है अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहतर होगा।
1: मोहसन नकवी मुल्क में बलोचिस्तान जेड़ो हालतू पैदा करण चाहे तो अवाम के मुको ॾेखारींदड़ मुशरफ हाणे किथे आहे ऐं तव्हांजो बि अहिड़ो ई हशर थियणो आहे। आमिर नवाज वड़ाए चयो त मोहसन नकवी हिकु कलाक में बयान ॾे, असां हिकु कलाक में रोडनि ते हूंदासीं। सिंध जे विरहाङे जो बयान ॿीहर आयो त संदसि इस्तीफ़ा खां सवाइ वापसि न वेंदासीं। के बी लिगारी चयो त मोहसन नकवी केरु थींदो आहे, सिंध त पीर पागारे खां बि पुछणु शुरू कयो आहे। सिंध हिकु सॾ जो इंतज़ारु करे रही आहे। लाहौर हाईकोर्ट बाल जे अॻूणे नायब सदर राबिया बाजवा चयो त सिंध विरहाइण मुल्क खे नुक़सान रसाइण बराबरि आहे। 26वीं ऐं 27वीं तरमीमनि जा नतीजा अचणु शुरू थी विया आहिनि। हकनवास टालपुर चयो त आईन ख़िलाफ़ क़दमनि खे न अॻु क़बूलियो हो ऐं न हाणे क़बूलींदासीं।

0: पीटीआई अवाम की मर्जी बिना सूबन के विरहांगे की मुखालफत कर छी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर है अवाम की मर्जी बिना सिंध जो विरहांगो थो तो वफाक कमजोर सूबन की क्याम बाबत तकरारी कानून साजी न थन घुर्जे। ये संजीदा मामलो है बहस थे घुर्जे। सलमान अकरम राजा चयो तो 73 की आइन खिलाफ वही सूबन के विरहांगे की हिमायत न कंदासी। आइन में वाजे है तो सूबे के विरहांगे लाए लागापियल सूबे की असेंबली ही मंजूर दी। सिंध के विरहांगे खिलाफ सिंध की अवाम से गड हुंदस। सिंध के विरहांगे खिलाफ रत की जरूरत पई तो पहरों रत जो फड़ो भी मौजो हों। कराची में वकीलन के खिताब कंदे खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सोहेल आफरीदी तो इज्जत दियण से सिंध की अवाम के सलाम पेश क्या तो सिंध असेंबली समेत सभी असेंबलियों के जाली समझू था। जैसे ये हुक्मरान सिंध से सच्चा आन तो असेंबलियों में इस्तीफा दियन असा सा गड रोडन से अचन। मलिर के इलाके लांडी में
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GAFM 94।